ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमार के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप

0: नेत्रा सेनी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 और 10 सेकंड हुए। लीजिए सुनिए आज का विचार। विषय है उचित और अनुचित। वाचक स्वर हैं डॉक्टर छगन मोहता।
2: एक दिन एक व्यक्ति मिला, वह मेरा पुराना परिचित, मेरे छोटे भाई का साथी और उसी की उम्र का है। बातचीत के चलते सिलसिले में कहने लगा कि बहुत वर्ष पहले आपकी बातें सुनता था, वे अच्छी लगती थी। आप अखबार पढ़कर सुनाते थे। राष्ट्रीय आंदोलन और देश की आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत के साथ चलने वाली संघर्ष की बातें बड़े ध्यान से सुनता था। गांधी जी की तो बात ही छोड़िए, उनके नेतृत्व में चलने वाले मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी, महामना मालवीय जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्रंजन दास, लाला लाजपत राय, सरोजिनी नायडू, इस तरह के दिग्गज नेताओं के त्याग, कष्ट, प्रतिभा और ओजस्वीतापूर्ण व्यक्तित्व तथा चरित्र की गाथा में सुनसन कर रोंगटे खड़े हो जाते थे। आंखें प्रेम और श्रद्धापूर्ण हर्षातिरेक के आंसुओं से गीली हो जाती थी। उन दिनों कोई साधु महात्मा या धार्मिक व्याख्याता, मठाधीश या पंडित धर्म अधर्म पाप पुण्य आदि के विषय में बातें करता तो लगता कि ये लोग बड़े स्वार्थी और पाखंडी हैं। भारत माता बुलाने की जंजीरों में जकड़ी हुई है और ये लोग पुरानी बातें जिनका वर्तमान में कोई मूल्य नहीं रह गया है सुना सुना कर जनता को गुमराह करते हैं। उस समय में रूढ़ियों की कट्टरता और अंधविश्वासों के क्षेत्र में बुरी तरह से उनकी शिक्षा लेकर की जाती थी। नतीजा यह हुआ कि मेरे जैसे लोगों के मन में उन सब पुरानी प्रचलित बातों का तो सर्वथा अवमूल्य रह गया। सब प्रकार के भय से घृणा उत्पन्न होने लगे और अंधविश्वासों से चित्त मुक्त हो गया। परंतु इस सबका नतीजा यह भी हुआ कि मन में गहरी उलझन पैदा हो गई। देश को आजादी मिलने के बाद तथाकथित देशभक्तों और समाज सुधारकों की कथनों और करने का अंतर विरोध उभर उभर कर सामने आने लगा। बार बार मन में ये सवाल उठते हैं कि आखिर पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे, उचित और अनुचित की कसौटी क्या है, किस आधार पर

0: लोक व्यवहारोचित है और अलोक अनुचित, क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य, क्या वास्तव में इसकी कोई कसौटी है या कोई कसौटी नहीं है। यदि नहीं तो फिर एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को अच्छा बुरा कहने का प्रयोजन क्या है। नैतिकता या अनैतिकता की चर्चा बहुत होती है, मगर उसका कोई मानदंड तो हो, कसौटी क्या है। उसने कहा, हम आपकी बातें सुनते रहे और वे अच्छी लगती रही है और उस समय में मानते भी रहे, परंतु अब तो ये सब जबरन गज लगता है। उसकी बात वास्तव में स्तब्ध करने वाली थी, खासतौर से इसलिए कि वह व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा नहीं, सीधा साधा आदमी है, साधारण तौर से अपनी घर गृहस्थी चलाता है, सोने चांदी की दुकान करता है और मुझसे पूछता है कि ये जो सोने चांदी के गहने में बेचता है, उन्हें यदि लोग प्रचलित अनुपात से कुछ अधिक मात्रा में तांबा जस्ता आदि का खोट मिला दूंगा तो क्या यह अनुचित होगा। सब लोग ऐसा ही तो करते हैं, मैं भी यदि ऐसा करने लगूं तो रोटी कुछ चिकनी चुपड़ी मिलने लगेगी और राजस्थान का स्तर कुछ ऊंचा हो जाएगा। स्तर की ऊंचाई के आधार पर ही लोगों की नजरों में सम्मानित हो सकता है। उसका यह प्रश्न नहीं बल्कि एक चुनौती है जो सही उत्तर मांगती है।
1: अभी आपने सुना उचित और अनुचित विषय पर आज का विचार। वाचक थे डॉक्टर छगन मोहता। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारु चैनल से बोल रहे हैं। विधि वेग 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:10 हुए जाते हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में आइए पहला भजन सुनते हैं आनंद कुमार के स्वर में।

आपने सुना श्रीवंशा और सखियों का गाया हुआ ये भक्ति गीत। अगला भजन सुनिए सीमा मिश्रा और साथियों की आवाजों में।

कुमार के गए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे बालकांड की दोहा संख्या 109 से दोहा संख्या 111 की अंतिम चौपाई तक सस्वर गायन।

कैलाश पर्वत पर शिवजी के विश्राम स्थल शीतल मंद सुगंधित प्यार देने वाले बरगद के नीचे शिव तथा पार्वती विराजमान हैं। पार्वती श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हैं, वो कारण जानने की जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। श्री राम के अवतार की कथा, उनका उदार बालचरित, जनक सुता से विवाह तथा ये जानने की कि किस दोष के कारण उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा, राम के वनवास, रावण वध तथा उस प्रकरण की अन्य लीलाओं के अतिरिक्त वो ये भी जानना चाहती हैं कि वो कौन सा तत्व है जिसके अनुभूति में ऋषि मुनि निमग्न रहते हैं, भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का रहस्य क्या है। इन ढेर सारे प्रश्नों द्वारा प्रकट जिज्ञासा के अतिरिक्त वो सभी तथ्य भी जानना चाहती हैं जो अनपूछे रह गए हों। पार्वती के सहज निष्कपट प्रश्न सुन महादेव आनंद विभोर हो गए। श्री राम की प्रीति तथा भक्ति से उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात 10 बजे से रात 11 बजे तक आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसका प्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। समय याद रखिएगा, रात 10 बजे और आकाशवाणी दिल्ली से ही रात 9:30 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा भारती। रात 9:15 पर फिल्म संगीत और लोक संगीत का समय रहेगा रात 8:30। रात 8 बजे हमारे केंद्र से सुनना न भूलिएगा कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। आज आप सुनेंगे इसका 146वां अंक। वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा और संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। सुगम संगीत सुनिएगा शाम 7:45 पर और शाम 7 बजे ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों और ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव वार्ड। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे श्री कुंजीलाल स्वामी और श्री राम स्वरूप बिश्नोई। युवा साथियों के लिए युवाणी का प्रसारण हमारे केंद्र से होगा शाम 5:05 पर। आज का युवाणी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे आनंद कुमार पुरोहित और शारदा नैन। शाम 6:05 पर होगा फिल्म संगीत। अलावा इसके फिल्म संगीत दिन में 2:30 पर और 12:40 पर। देहरादून में महिला जगत कार्यक्रम दिन में 1:05 पर। आज का कार्यक्रम बहनों के लिए लेकर आएंगी श्रीमती सपना व्यास और श्रीमती बिंदु शर्मा।

सौरभ कार्यक्रम सुनेगा सुबह 8:30 पर। आज आप सुनेंगे श्री दयानंद शर्मा की वार्ता आधुनिक युग में अनुवाद की उपयोगिता और उपादेयता। सुबह 9:10 पर आप सुन सकते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और सुगम संगीत सुबह 8:45 पर। शास्त्रीय संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 9:30 पर। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री लतीफ अहमद का तबला वादन। आज का तबला वादन रूपक ताल में होगा। समय सुबह 9:30। फौजी भाइयों के लिए जय जवान कार्यक्रम सुबह 10:00 और 11:00 सुनिएगा आपका अपना कार्यक्रम हेलो बीकानेर।

0: ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारु चैनल से बोल रहे हैं। मुझे 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सुनते हैं खेती की बातें कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे श्री अश्विनी व्यास की वार्ता, पशुओं को लू और तापघात से बचाएं।
1: किसान भाई राम राम। बढ़ती गर्मी रे मायने आपाने सके सके पशुओं ने भी बहुत तकलीफ होवे और ई गर्मी सो बचण वास्ते आपाने कई तरह रा उपचार करना पड़े। ई तेज गर्मी सो और लू सो तापघात होने री संभावना भी रहे है और पशुओं रे शरीर वास्ते आ स्थिति सही कोनी। सामान्य तौर पर अपन ने पशुओं में लू लागनो, हीट स्ट्रोक, हाइपरथर्मिया, गर्मी ग्रीष्म तनाव कह सका हाँ। पशुओं रे मायने गर्मी रे में शरीर और तापमान जी को है वो 101 डिग्री से बढ़कर 104 डिग्री हो जाया करे, ए लूरा लक्षण माना गया है। हीट स्ट्रोक एक गर्मी से संबंधित आपात समस्या है जी कैसो पशुमारी जी की तंत्रिका तंत्र है अभी में परिवर्तन आ जावे और भौतिक लक्षणारे मान निर्जलीकरण रह सके, शरीर और तापमान असामान्य रूप से बढ़ जावे और ओ पशु रे शरीर वास्ते घातक साबित हो सके। तापघात या लू अगर आप कारण की बात करा तो अपनी ढोरा धरती मायने गर्मी ज्यादा पड़े, पानी की कम मात्रा हो, भौगोलिक परिस्थितियां पानी इस टाइप री ही है। अगर आप लक्षण की बात करा तो पशुओं में सामान्य रूप में एक मिनट में 15-30 बार सांस लेने की प्रवृत्ति हो, अगर पशु में सांस लेने की रफ्तार 50 से ज्यादा हो जावे तो आपने मानना चाहिए कि वे हीट स्ट्रोक का लक्षण है। अगर तेज तेज सांस लेवे पशु तो आपने देख रहा चीज समझ जानी चाहिए कि पशु रे माने तापघात रो असर होयो है। अगर पशु रे शरीर ना पर छूर देखा और बिरो तापमान आपने ज्यादा लाग रहे, अगर शरीर गर्म है तो भी ओ बिरो कारण हो सके है। ज्यादा लाट अगर स्त्रवण हो रहा है तो भी बेरे तापघात हो सके। अगर दुधारू पशु है और बेरे दूध उत्पादन में कमी आएगी है और सबसे बड़ो लक्षण है कि बेरे शरीर में तापघात हो गयो है। अगर पशुओं रे वजन में कमी आवे तो भी आप देख सका कि बेरो स्वास्थ्य ठीक कोनी। अगर सांस लेवन वास्तर पशु आपरो मुंडो खोल सांस लेवे और मुंडे सु सांस लेवे तो भी यह लक्षण बेरे शरीर में गर्मी बढ़ने रह हो। पशुमारी अगर छाव सु ज्यादा लगा हुआ धूप सु बार बार पशु छाव में जार बैठना चाहे सुस्त हो जावे तो आप समझ सका कि बेरे शरीर मायने तापघातरी संभावना होगी है। पशु चारे रो सेवन कम कर देवे और पानी ज्यादा मात्रा में पिए तो भी आपने समझ लेना चाहिए। उल्टी और दस्त सागे सागे अगर पशु में बेचैनी है तो भी वो तापघात रो असर हो सके। मुंडे रे खन्ने अगर झाग आ जावे और पशु रे शरीर में ज्यादा पसीना आवे तो भी वो तापघात रो ही कारण है। अगर आप उपचार और रोकथाम की बात करा तो ज्यादा मात्रा

0: अपन पशुओं ने पानी पिलाना चाहिए सागे सागे ई मौसम रे माने भूसे की मात्रा कम कर देनी चाहिए और हो सके तो अपन ने हरो चारो ही पशु ने खिलाना चाहिए। पशुशाला रे मायने गर्मी से बचाव और अपन ने सही इंतजाम करना जरूरी है। अगर हो सके तो आप पंखों भी बठे लगा सका। पशुओं ने ज्यादा देर तक अपने धूप में कोनी रखना है क्योंकि अगर गर्मी तेज है तो भी शरीर में ज्यादा नुकसान हो सके। गर्मिया रे मौसम में पशु ने चारे रो सेवन कम करे ई वास्तर रतीब मिश्रण रो सेवन अपने ज्यादा करवाना है ताकि पर्याप्त मात्रा में पशु ऊर्जा और प्रोटीन भी ने मिल सके। रतीब मिश्रण में कोई भी एक अनाज जिको है वो 40 किलोग्राम, चोकर या चूरी 37 किलोग्राम, खड़ी 20 किलोग्राम, सादो नमक 1 किलोग्राम और मिनरल मिक्सर 2 किलोग्राम ओ सगड़ो मिलार और पशु ने अगर अपना खिलावा तो वो तापघात से बच सके। अगर कोई भी पशु तापघात या लू से ग्रसित हो गयो है और अपने लाग रहे है कि ये स्वास्थ्य ठीक को नहीं तो अपने तुरंत प्रभाव से डॉक्टर साहब से सलाह करनी है, बेने दवाई दरानी है, बेरे टीकाकरण कराना है ताकि पशु की तबीयत जल्दी से सुधर सके।
1: खेती की बात कार्यक्रम में भी आपने सुनी श्री अश्विनी व्यास की वार्ता पशुओं को लू और तापघात से बचाएं। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सतीश धेरा का गाया हुआ ये लोग।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावर चैनल से बोल रही हैं। मुद्दे 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड की 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

0: प्रथम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुख योजनानां एकीकृत पद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानां उपलब्धता सुनिश्चेतुं चतुस्सप्तति सहस्राधिकैक लक्ष क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् आसीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटंस दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटंस दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: विधि 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 106.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हितेंद्र व्यास का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह सुबह की जब सूरज की पहली किरण हमारे घर की खिड़की के अंदर आती है तो वो अपने साथ ढेरों सकारात्मक बातें और उजाला लेकर आती है। लेकिन अक्सर ये सवाल रहता है कि आखिर ये सकारात्मकता क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या ये कि हम अपनी परेशानियों को भूल जाएं? नहीं साहब, परेशानियां तो जिंदगी का हिस्सा है, वो तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन उन परेशानियों के बीच मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेना, ये बात होती है सकारात्मकता की। एक छोटी सी बात सोचिए, सुबह सुबह जब हम तैयार होकर काम पर निकलने वाले हों और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए, तो यह दो तरीके हैं सोचने के। पहला ये कि अरे यार, बारिश को आज ही होना था क्या, मेरा तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, कीचड़, ट्रैफिक जाम। और दूसरा तरीका ये, वाह यार, मौसम बहुत सुहाना हुआ है, चलो आज थोड़ी सी सावधानी से चलेंगे, लेकिन चाय पकौड़े का आनंद लेंगे और उसी से हम शुरुआत करेंगे। मौसम वही है, बारिश वही है, बदला क्या? सिर्फ हमारा नजरिया। जैसे कि नजरिया बदला और पूरा दिन हमारा खुशनुमा हो गया। कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा दिन बनता चला जाता है। अगर हम सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को, इस कुदरत को, प्रकृति को शुक्रिया कहेंगे कि वाह, आज का दिन कितना खूबसूरत है, आज मैं कुछ अच्छा करूंगा, तो यकीन मानिए पूरे दिन हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी रहेगी। सकारात्मक सोच कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब कुछ बदल दे, लेकिन ये वो ताकत है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती है, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति जगाती है कि आप

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना है आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: Waves OTT app now and watch for free.
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में बात करी सकारात्मक सोच की। सोच बदलती है तो जीवन बदलता है, और जीवन में समय के साथ साथ चलते रहने से समाज भी बदलता है, सोच बदलती है, और साथ ही संवाद के माध्यम भी बदलते हैं। कभी समाचारों का इंतजार अगले दिन तक के अखबार से होता था, और आज डिजिटल माध्यमों ने दुनिया को हमारी उंगलियों पर ला दिया है। अब खबरें केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि देखी जाती है, सुनी जाती है और साझा की जाती है। कलम की ताकत से सच को आवाज मिली, और टेक्निक के साथ आज की पत्रकारिता को नई परवाज मिली। दोस्तों, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। बदलते दौर में इसकी जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ गई हैं। जहां एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म में सूचनाओं के प्रसार को तेज और व्यापक बनाया, वहीं सच बात यह है कि इसकी विश्वसनीयता और नैतिकता की कसौटी भी पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आइए सुनते हैं एक वार्ता, डिजिटल युग में बदलती पत्रकारिता। वार्ताकार हैं श्री ज्योति प्रकाश रंगा।
1: डिजिटल युग में बदलती पत्रकारिता। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। यह समाज का दर्पण है जो न केवल घटनाओं को सामने लाता है बल्कि जनमत को भी दिशा देता है। परंतु पिछले दो दशकों में तकनीकी क्रांति, विशेषकर इंटरनेट और स्मार्टफोन के प्रसार ने पत्रकारिता के स्वरूप, इसकी कार्यप्रणाली और प्रभाव तीनों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। डिजिटल युग से पहले समाचारों का प्रमुख माध्यम प्रिंट मीडिया जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो और टेलीविजन हुआ करते थे। समाचारों के प्रसारण में समय लगता था, जानकारी सीमित स्रोतों से आती थी, लेकिन आज इंटरनेट ने सूचना को पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाना संभव कर दिया है। डिजिटल पत्रकारिता का उदय, डिजिटल पत्रकारिता का अर्थ इस संदर्भ में कि ऑनलाइन माध्यमों के जरिए समाचार का संकलन, संपादन और प्रसारण। आज समाचार वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ब्लॉग पत्रकारिता के प्रमुख माध्यम बन चुके हैं। अब हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है, जिससे वह न केवल समाचार पढ़ सकता है बल्कि खुद भी खबरें बनाकर के साझा कर सकता है। इस बदलाव ने पत्रकारिता को अधिक तेज, सुलभ और व्यापक बना दिया। जहां पहले सुबह अखबार का इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब लाइव अपडेट्स तुरंत उपलब्ध होते हैं। ब्रेकिंग न्यूज अब सैकड़ों में फैल जाती है। सोशल मीडिया और नागरिक पत्रकारिता। डिजिटल युग में सोशल मीडिया

ने पत्रकारिता को नई पहचान दी है, नए आयाम दिए हैं। इन माध्यमों ने नागरिक पत्रकारिता को भी जन्म दिया है, जहां आम लोग भी घटनाओं की जानकारी साझा कर सकते हैं। किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या सामाजिक घटना की वीडियो और फोटो सबसे पहले आम लोगों के द्वारा ही साझे किए जाते हैं। इससे सूचना का प्रवाह और प्रसार तेज हुआ है। कई बार मुख्य धारा मीडिया को भी दिशा मिलती है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है कि फेक न्यूज यानी कि झूठी या भ्रामक खबरों का प्रसार, बिना सत्यापन के खबरों का वायरल होना समाज में भ्रम और तनाव पैदा कर सकता है। पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर भी सवाल। डिजिटल युग में सूचना की अधिकता के बीच में सबसे बड़ी चिंता यह है कि वह अपनी विश्वसनीयता की कसौटी पर संदिग्ध होता है। जब हर व्यक्ति समाचार साझा कर सकता है, तब सत्य और असत्य में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार क्लिकबेट, हेडलाइन, अधूरी जानकारी और भ्रामक तथ्यों का उपयोग दर्शकों को आकर्षित करने के लिए भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में पेशेवर पत्रकारों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्हें तथ्यों की जांच, निष्पक्षता और नैतिकता का विशेष ध्यान रखना होता है। आर्थिक चुनौतियां और बदलाव डिजिटल पत्रकारिता ने मीडिया उद्योग के आर्थिक ढांचे को भी बदल कर रख दिया है। पहले अखबारों की आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन और बिक्री हुआ करता था, लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन का स्वरूप बदल गया है। सोशल मीडिया कंपनियों ने डिजिटल विज्ञापन का एक बड़ा हिस्सा अपने हाथों में ले लिया है, जिससे पारंपरिक मीडिया संस्थानों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कई संस्थान डिजिटल सब्सक्रिप्शन मॉडल अपना रहे हैं। मल्टीमीडिया पत्रकारिता का विस्तार डिजिटल युग में पत्रकारिता केवल लेखन तक सीमित नहीं रही, अब वीडियो, पॉडकास्ट, इन्फोग्राफिक्स और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे माध्यमों का उपयोग बढ़ गया है। एक पत्रकार को अब मल्टी स्किल्ड होना पड़ता है। उसे लिखना, बोलना, वीडियो बनाना और तकनीक का उपयोग करना आना चाहिए। इससे पत्रकारिता अधिक आकर्षक और प्रभावी बनी है, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। नैतिकता और जिम्मेदारी डिजिटल युग में पत्रकारिता के सामने बड़ी चुनौती है। नैतिकता बनाए रखना। नैतिकता की होड़ में कई बार सत्यापन की प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि पत्रकार अपने मूल सिद्धांतों, सत्य, निष्पक्षता और जनहित को न भूले। सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि फेक न्यूज पर नियंत्रण के लिए जागरूकता को बढ़ाया जाए और लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया जाए। भविष्य की पत्रकारिता आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा जर्नलिज्म और ऑटोमेशन पत्रकारिता को और अधिक बदलेंगे। खबरों का विश्लेषण अधिक गहराई से किया जाएगा और व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार कंटेंट उपलब्ध होंगे, लेकिन चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, पत्रकारिता का मूल उद्देश्य हमेशा वही रहेगा, सत्य को सामने लाना और समाज को जागरूक करना। हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल युग ने पत्रकारिता को नई पहचान दी है, नए शिखर दिए हैं, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आई है। ये आवश्यक है कि हम तक

तकनीक का सही उपयोग करें और पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को, आदर्शों को और मूल्यों को बनाए रखें। मैं श्रोताओं से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम एक जागरूक नागरिक बने, खबरों को सोच समझकर स्वीकार करें और सत्य को पहचानने की क्षमता को विकसित करें। वर्तमान समय में डिजिटल पत्रकारिता करते हुए हमें और अधिक संवेदनशीलता रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भ्रामक और असत्य और अर्धसत्य खबरें, जानकारी समाज और व्यक्ति को मुश्किलों में डाल सकती है, जिससे पत्रकारिता का भी बड़ा नुकसान होता है और विश्वसनीयता के साथ हमारा ध्येय भी संदिग्ध और अप्रामाणिक हो जाता है। हम कोशिश करें कि डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से शीघ्र और सत्य घटनाओं के साथ हम प्रामाणिक और सकारात्मक पत्रकारिता करें, जिससे डिजिटल पत्र

0: सत्कारिता का भी बड़ा नुकसान होता है और विश्वसनीयता के साथ हमारा धी भी संदिग्ध और अप्रामाणिक हो जाता है। हम कोशिश करें कि डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से शीघ्र और सत्य घटनाओं के साथ हम प्रामाणिक और सकारात्मक पत्रकारिता करें, जिससे डिजिटल पत्रकारिता और अधिक सुदृढ़ हो सके, विश्वसनीय हो सके और लोगों के लिए अनुकरणीय हो सके।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी श्री ज्योति प्रकाश रंगा की वार्ता, डिजिटल युग में बदलती पत्रकारिता। प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा की थी और संयोजन श्री अमित सिंह का था।

दोस्तों, आज की इस सुहानी सुबह और ये ताजी हवा जहाँ हम सांस ले रहे हैं, तो वही चलिए आपको देश के एक ऐसे खूबसूरत हिस्से की सैर पर लिए चलते हैं जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने समंदर की लहरें, नारियल के पेड़ और एक अजीब सा सुकून दिखाई देने लगता है। जी साथियों, मैं बात कर रहा हूँ गोवा की, और आज 30 मई का दिन गोवा के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है गोवा स्थापना दिवस। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि गोवा तो हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा, तो आज स्थापना दिवस क्यों? तो चलिए आज सुबह सुबह आपको एक छोटा सा किस्सा, एक इतिहास की बात बताते हैं। जब हमारा पूरा देश 1947 में आजाद हो गया था, तब गोवा आजाद नहीं हुआ था, वहां पुर्तगालियों का राज था। भारत की आजादी के 14 साल बाद यानी 19 दिसंबर 1961 को हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। आजादी के बाद भी गोवा तुरंत अलग राज्य नहीं बना था, वो दमन और दीव के साथ मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना। लेकिन फिर आया आज का दिन यानी 30 मई 1987। इसी दिन गोवा को दमन और दीव से अलग करके भारत का 25वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया और पणजी को इसकी राजधानी बनाया गया।

दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी सब्जी है जो अमीर के महल से लेकर गरीब की कुटिया तक हर जगह राज करती है, जिसे हम सब्जियों का राजा भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने, हमारा प्यारा गोल मटोल आलू। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज यानी आज के दिन को हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। जी हाँ, आलू दिवस। अब कई हमारे साथी हमारे श्रोता सोचेंगे, अरे तेंद्र भाई, भला आलू का कोई दिन होता है क्या? कोई? जी हाँ साहब, होता है। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने बकायदा इसकी शुरुआत की। क्यों? क्योंकि आलू सिर्फ एक सब्जी नहीं, यह दुनिया भर में करोड़ों लोगों का पेट भरने वाला एक जादू करने वाला सुपर फूड है। वैसे क्या आपको पता है कि आलू हमारे देश का मूल निवासी नहीं है? जी हाँ, करीब 400-500 साल पहले पुर्तगाली लोग इसे भारत में लेकर आए थे, लेकिन हम भारतीयों ने इसे ऐसा अपनाया, ऐसा गले लगाया कि आलू के बिना तो यूं कहे कि हमारा किचन, हमारी रसोई अधूरी है। हर मर्ज की दवा है आलू, हर सब्जी का साथी है आलू। आलू की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? जी हाँ, इसकी सकारात्मक सोच। और ये इसलिए क्योंकि कहते हैं एडजस्टिंग नेचर का होता है। ये अकेला ऐसा है जो किसी के साथ भी खुल मिल जाता है। गोभी के साथ डालो, मटर के साथ डालो, बैंगन के साथ डालो, मिर्च के साथ डालो, आलू को अलग से बना लो, दम जीरा डालो, आलू जीरा। कुल मिलाकर कहना ये है कि आलू महफिल लूट लेता है और आलू वाकई राजा है। आलू हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा।

से कम सामान रखना, जिंदगी आसान रखना। आज का सुप्रभात कार्यक्रम आपके सेवा में हितेंद्र व्यास ने प्रस्तुत किया।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। समय मिलाना चाहिए तो मिलाइए, सुबह के ठीक 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में फिल्म का नाम है लवर्स।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में जब सुनी हो आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ गीत, फिल्म का नाम है स्वर्ग से सुंदर।
1: अब के बरस,
2: हाँ, अब के बरस,
1: हो अब के

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावर चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।

0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। घर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनक लता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइन 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
4: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also we are working.
3: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
5: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
3: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रही है। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारी पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर

0: 6.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइन की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही है। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत ढूंढ रहे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय

0: चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, श्रोमणी अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रीवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इनकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धरमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30

0: और एफएम बैंड की 101.6 मेगाहर्ट्ज पर सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए श्री दोहन शर्मा की वार्ता आधुनिक युग में अनुवाद की उपयोगिता।
1: हर युग और काल में विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति करते हुए हम जिस आधुनिक युग में पहुंच चुके हैं वहां विज्ञान और तकनीक अपने चरम पर है। नित्य नए शोध एवं आविष्कार ने पूरे विश्व को समृद्ध किया है। विश्व की इस समृद्धि का उपयोग पूरा विश्व अच्छी तरह से सोच व समझकर विश्व कल्याण के लिए कर सके उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक एवं उपयोगी है अनुवाद कला, जिस कारण नए शोधों और तकनीकी सुधार के लाभ का विस्तार विश्व के कोने कोने में हो सके। ठीक यही बात संसार के साहित्यिक व सांस्कृतिक विरासत एवं नव सृजन को लेकर भी कही जा सकती है। इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र व समाज शास्त्र के मान्य धारणाओं व कालांतर में इसके खंडन व पुनर्स्थापन हेतु भी सारी भाषाएं एक दूसरे के अनुवाद पर ही निर्भर है। हमारे देश भारत में तो अनुवाद का महत्व और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 26 भाषाओं के साथ साथ सैकड़ों बोलियों और गैर मान्यता प्राप्त भाषाओं के लोग रहते हैं। अधिकांश जनता हिंदी के साथ साथ एक क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा तथा अंग्रेजी का ज्ञान अवश्य रखती है या रखने की इच्छा रखती है। अच्छे अनुवाद हेतु हमें विभिन्न चरणों से गुजरना होगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अनुवाद से पहले उसकी समुचित तैयारी व शोध कर लेना चाहिए। इसके लिए अनुवादक को दोनों ही भाषाओं में समान रूप से दक्ष होना चाहिए। सीमित या कामचलाऊ ज्ञान कभी कभी हास्यास्पद भी हो जाते हैं और अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं। एक अनुवादक एक भाषा का अच्छा ज्ञाता हो और दूसरी भाषा में थोड़ी जानकारी रखता हो तो उसे अनुवाद जैसा महत्वपूर्ण कार्य कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर भाषा में अनेक शब्द ऐसे मिल जाते हैं जो समय, काल और परिस्थिति के अनुरूप अपना अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। इसलिए एक कुशल अनुवादक को दोनों भाषाओं के शब्दार्थ के साथ साथ भावार्थ का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। उसे दोनों भाषाओं के मुहावरों, कहावतों, खान पीन से लेकर सामाजिक परिवेश का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। विशेष रूप से साहित्यिक अनुवाद करते समय अगर अनुवादक दोनों भाषाओं की सामाजिक संरचना की शब्दावली से भली भांति परिचित नहीं है तो कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, नाटक का मूल भाव वो अपने अनुवाद में उत्पन्न करने में नाकाम रहेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में सपाट अनुवाद की जगह भावानुवाद की प्रबल मांग होती है, ताकि पाठक, दर्शक या श्रोता मूल कथ्य के वास्तविक भाव के मर्म को समझ सके या वहां तक पहुंच सके। संबंधित भाषा की वर्तनी का ज्ञान होना और शब्दों की सही प्रूफ रीडिंग करना भी एक अच्छे अनुवादक की पहचान है। अनुवाद की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं हो, इसलिए अच्छे अनुवादक हमेशा अनुदित रचना को प्रकाशित करने से पूर्व उसकी पुनर्समीक्षा अवश्य करते हैं। अनुवाद कई प्रकार के होते हैं। सूचनात्मक अनुवाद, लिखित सामग्री का अनुवाद, तकनीकी अनुवाद, यांत्रिक अनुवाद और साहित्यिक अनुवाद। साहित्यिक अनुवाद एक ऐसा अनुवाद है जिसमें अनुवादक अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ या घटाव नहीं करते हुए लेखक की मूल भावना पाठक तक पहुंचा दे। सूचनात्मक, प्रशासकीय व तकनीकी अनुवाद संदेश को समझा देने के लिए किया जाता है। एक अच्छा अनुवाद हमेशा दूसरी भाषा के पाठक को वही जानकारी एवं आनंद प्रदान करता है जितना उसे मूल भाषा में मूल लेखक प्रदान कर सकता था। अतः उपसंहार स्वरूप कहा जा सकता है कि अनुवाद बिल्कुल पठनीय और सरल सहज होना चाहिए और इसे पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि जैसे हम मूल ही पढ़ रहे हैं। अनुवाद के कारण ही हम विश्व के अन्य भाषाओं के कवियों, चिंतकों, उपन्यासकारों, नाटककारों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों आदि के विचार व शोध से परिचित हो पाते हैं। अतः दूसरी भाषाओं के अध्ययन का प्रारंभ हमें प्राथमिक

0: भाषाओं से ही कर देना चाहिए ताकि हम भविष्य में एक अच्छे अनुवादक बन सकें। अनुवादकों व दुभाषियों की आज विश्व में बहुत जरूरत है और साहित्यिक, सांस्कृतिक व तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान हेतु इसकी उपादेयता कल्पनातीत है। अनुवाद से हम न केवल दूसरी भाषाओं के अच्छा रचना कर्म से परिचित होते हैं, बल्कि हम अपनी भाषा में रचे जा रहे साहित्य का भी मूल्यांकन कर उसके स्तर में बढ़ोतरी के प्रयास करते हैं। आज संस्कृत के अनेक ग्रंथों के अनुवाद के कारण ही हम अपने सांस्कृतिक गौरवमय अतीत से परिचित हो सके हैं। बंगला, मराठी, मलयालम, असमी, गुजराती, डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली आदि की श्रेष्ठ रचनाओं का हिंदी में अनुवाद पढ़कर ही हम उन भाषाओं के महान लेखकों से परिचित हो सके हैं। उनकी महान रचनाओं की महत्ता को समझते हुए भारतीय संदर्भ में भारत के यश को विश्व में स्थापित कर सके हैं। उसी तरह हिंदी के महान लेखकों भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश आदि की रचनाओं की वैश्विक प्रसिद्धि अनुवाद के कारण ही संभव हो सकी है। अनुवाद वो एकमात्र प्रक्रिया है जिस कारण हम विश्व की अनमोल धरोहरों को शब्दों के रूप में प्रकाशित करके हमेशा के लिए अक्षुण्ण रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि हम एक से अधिक भाषाओं को पढ़ें और जानें ताकि हमारे व्यक्तित्व में निखार आने के साथ साथ हमारा प्रगति पथ प्रशस्त रह सके। अनुवाद वो एकमात्र प्रक्रिया है जिस कारण हम विश्व की अनमोल धरोहरों को शब्दों के रूप में प्रकाशित करके हमेशा के लिए अक्षुण्ण रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक से अधिक भाषाओं को पढ़ें और जानें ताकि हमारे व्यक्तित्व में निखार आने के साथ साथ हमारा प्रगति पथ प्रशस्त रह सके। अनुवाद के संदर्भ में बहुत से विद्वानों ने कहा है कि अनुवाद बेशक कितना भी श्रेष्ठ स्तर का क्यों न हो, उसकी महक में 19-20 का अंतर आ ही जाता है। इसलिए ये मानते हुए कि एक हमारी मूल भाषा है और दूसरी हमारे लिए विदेशी भाषा है, हमारा अनुवाद कर्म अनुवाद का प्रतिफल 100% दे सके। अंत में सभी श्रोताओं से मेरी यही प्रार्थना है कि स्वयं को समृद्ध करने के लिए हमें अधिक से अधिक अनुदित रचनाओं को पढ़ने का श्रम करना चाहिए तथा अपनी भाषा की श्रेष्ठ रचनाओं का अधिकाधिक अनुवाद करना चाहिए।
1: सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुनी श्री दयानंद शर्मा की वार्ता आधुनिक युग में अनुवाद की उपयोगिता। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावाड़ी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हरिहरन की गाई कुछ गजलें।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरिहरन के गायक कुछ गजले। मिडिल 235.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के धोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं, आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर

0: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सरकार ने स्पष्ट किया, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी स्टॉक संरक्षित करने के निर्देश दिए। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हुआ। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों ने किया श्रमदान। और मौसम में आए बदलाव के बाद पूर्वी उत्तरी जिलों में प्रचंड गर्मी से मिली राहत। अगले दो दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
1: रिगार्डिंग द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप द प्राइस स्टेबल, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, सो दीज ऑल एफर्ट्स हैव बीन डन टू कीप द प्राइस स्टेबल। वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आल्सो। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है दैट शुड बी मिनिमम 30 डेज विद देम एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड सिमिलरली फॉर क्रूड आल्सो वी आर वर्किंग।
0: इस बीच 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ भारतीय वाणिज्य जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और इसके 3 जून तक स्वदेश पहुंचने की उम्मीद है। इधर पचपदरा एचपीसीएल रिफाइनरी में बीते महीने संयंत्र में आग के बाद रुकी हुई गतिविधियों और कार्यों की प्रगति को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने एचपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। रिफाइनरी से आगामी 1 जून से कमिश्निंग गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी भी अगले कुछ सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कल जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़ों के अनुसार देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हो गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों को लगे टीकों का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा।

0: बोर्ड ने विद्यार्थियों को किसी भी जानकारी के लिए सीबीएसई की टेली परामर्श हेल्पलाइन पर संपर्क करने की सलाह दी है। इधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। 12वीं का परिणाम 71.65% और 10वीं कक्षा का परिणाम 64.69% रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत इन दिनों कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुए अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और पेयजल संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा श्रमदान के साथ जागरूकता आयोजन तथा जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और प्रभारी मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभियान के तहत कल जयपुर के नींदड़ वन क्षेत्र में श्रमदान किया। उन्होंने पक्षियों के लिए परिंदे लगाए और इको ट्रेल का लोकार्पण किया। इधर जल भवन परिसर में जल संरक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्मिकों ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए और जल के सदुपयोग का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। बालोतरा के रेवाड़ा जैतमाल अमृत सरोवर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री के विश्नोई ने श्रमदान किया। चित्तौड़गढ़ में प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने जिलाधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई हिस्सों में कल देर शाम मौसम में अचानक बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर सहित 8 शहरों में दोपहर बाद आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। इस दौरान राजधानी जयपुर सहित आसपास के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी के बीच जयपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, अलवर और झुंझुनू जिलों में वर्षा हुई। झुंझुनू जिले के कई इलाकों में अंधड़ आया। इस दौरान आसमान में धूल का गुबार छा गया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में देर शाम मौसम का मिजाज बदला और धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश ने लोगों को तेज गर्मी से राहत दी। धौलपुर, भरतपुर, दौसा सहित पूर्वी जिलों में भी मौसम के बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली। अजमेर में दिन भर तेज धूप के बाद देर शाम मौसम ने करवट बदली और आंधी बिजली की गतिविधियों के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। बेमौसम की बरसात से जिले में कई स्थानों पर पेड़ों के गिरने और बिजली के पोल उखड़ने की खबर है। हाड़ौती क्षेत्र में भी आंधी बारिश की गतिविधियां हुई, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। नागौर और आसपास के इलाकों में भी देर रात तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ निजात दिलाई। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई।
1: नागौर जिले में शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश ने लोगों को नौतपा में गर्मी से राहत दी। वहीं जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। दिन भर उमस और गर्मी से परेशान लोगों को देर रात चली तेज आंधी और बरसात से राहत मिली। बारिश के दौरान शहर के कई निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया। जिले के असावरी, तौसर सहित जिला मुख्यालय के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नींबू के आकार के ओले गिरे। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। आकाशवाणी समाचार नागौर।
0: मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज और कल जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभागों में बारिश के साथ मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। दूसरी ओर प्रदेश के पश्चिमी और सरहदी जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान भीषण गर्मी की स्थिति बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के मौजूदा संस्करण में राजस्थान रॉयल्स का सफर समाप्त हो गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन गुजरात टाइटंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 219 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता का फाइनल कल गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

सरकार ने स्पष्ट किया, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी स्टॉक संरक्षित करने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों ने किया श्रमदान। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हुआ। और मौसम में आए बदलाव के बाद पूर्वी उत्तरी जिलों में प्रचंड गर्मी से मिली राहत। अगले दो दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा।

निधिवत 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के धोलामारी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आप सुनते हैं सीमा मिश्रा और सखियों के गाए कुछ लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सिंह निशा और सखियों के गाए हुए कुछ लोकगीत। आज का ही कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के

106 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम है आज हम सुनते हैं पखावज और तबला की युगलबंदी। कलाकार हैं श्री रामदास शर्मा और श्री अकबर हुसैन खान। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं तीन ताल में तबला और पखावज की युगलबंदी।

இதென்று

घंटा तक

Da,

Da,

आप सुन रहे थे पखावज और तबले की तीन ताल में जुगलबंदी। कलाकार थे श्री

अध्यक्ष अकबर हुसैन खान। आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। बीजिंग 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 110.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:55 हुए हैं। लीजिए पेश है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय जवान।

जय जवान कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फौजी भाइयों, पेश है कार्यक्रम में पहला गीत कविता कृष्णमूर्ति, मनहर, उदित नारायण, सुखविंदर और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है सौदागर।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक क्लीन भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहे, उन्हें पैसे ना भेजे और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
6: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आपके लिए अगला गीत किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन, भूपेंद्र और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सिर्फ इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है अपनी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हो कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे। RBI कहता है।
5: जानकारी बनिए, सतर्क रहिए।

0: चर्चा
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

जय जवान कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। फौजी भाई अगला गीत आपके लिए किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है यादों की बारात।

0: मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आइए आप। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

भैया अभी आपने जो गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म अमृत से। गीत को गाया था मनहर और अनुराधा पौडवाल ने। अगला गीत किशोर कुमार, मुकेश, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज़ों में

हेलो बीकानेर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है हेलो बीकानेर। और नाम भी ऐसा ही है कि जब आप हमसे हेलो बोलते हैं, फोन करते हैं, तो

आपसे जुड़ते हैं और करते हैं बातचीत। बातचीत का सिलसिला श्रोताओं शुरू करते हैं अपने जीवन से। ये जीवन जिसमें हम जब चाहे तब परिवर्तन कर सकते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ पथ का पथिक बना सकते हैं। हम कई बार ये कहते हैं कि अरे अब संभव नहीं है, क्योंकि उम्र हो गई है और अब हम ऐसे हो गए हैं, हमारी आदतों में वो चीजें आ गई हैं कि हम उनको नहीं बदल पाते। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन की संभावनाओं के जो द्वार हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। हम चाहें तो सदैव अपने जीवन में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बनाने में अथवा निकृष्ट से निकृष्ट बनाने में हम समर्थ होते हैं। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य अपने संग से, अपने संस्कारों से और अपने परिवेश से जीवन को परिवर्तित करने में सक्षम होता है। यदि कुसंगति है तो उसका पतन भी कर सकता है और सुसंगति है तो जीवन की उन्नति और कल्याण के मार्ग पर भी बढ़ सकता है। बहुत बड़ा आशीर्वाद है ईश्वर का कि उसने हमें मानव देह देकर के भेजा है और हम अपने मन से काम कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इस मानव तन को, इस देह को, इस मन को, ईश्वर के इस आशीर्वाद को श्रेष्ठ कार्य में लगाएं। श्रेष्ठ पथ का अनुगमन करते हुए, श्रेष्ठ का ही चिंतन करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना ही जीवन की परम सार्थकता है। और श्रोताओं, ये सार्थकता तभी सिद्ध है जब हम अपने आप को इन नियमों में साधते हैं। हम अपने आप को सुसंगति की ओर लेकर के जाएं। हमारी संगत ऐसी हो जहाँ पर हमारे गुणों का दोहन न हो, हमें कुछ हमेशा नया सीखने को मिलता रहे और यही सीख हमारे श्रोताओं के माध्यम से भी हमें मिलती है जो जुड़ते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम से।

0: तो श्रोताओं आइए देखते हैं हमारे साथ में हमारे साथी कौन जुड़े हैं। हेलो,
1: हरिओम।
0: हरिओम, नमस्कार सर।
1: नमस्कार साहब।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सुभाष वकील बोल रहा हूँ।
0: जी सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं सर?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये कह रहा था कि 3 साल में एक बार आता है अधिक मास, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।
0: जी हाँ।
1: और इस मास में आज एकादशी भी है, कमला एकादशी है। इन दिनों में जो पाठ पूजा दान वगैरह की जाती है, सिर्फ शादियां नहीं होती, शुभ काम बाकी सारे काम होते हैं।
0: जी जी।
1: इसको पवित्र इसलिए माना गया है कि भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया इस मास को, तेरी क्या है पूजा होगी, तेरी कीमत बढ़ेगी, इस महीने में जो भी दान पुण्य करेंगे वो कई गुना फल देगा। क्योंकि तो कलयुग में सत्य तो रहा नहीं, झूठ झूठ बोल रहे हैं मोबाइलों पे और में
0: जी।
1: और तब भी नहीं रहा, कोई भी इंद्रियों पे काबू करता नहीं है। और एक जब दान बचा है, जय कैसे भी दान करो वो फल जरूर देता है। जैसे आपने अनजाने में कोई जहर पी लिया या वैसे पी लिया, वो अपना असर तो बताएगा। अमृत पी लिया आपने जाने में अनजाने में, वो अपनी वस्तु अपना क्या है गुण नहीं छोड़ती।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए मेरा कहना है कि अगर आप दान करते रहोगे ना, तो जो आप कर्म कर रहे हो ना, उसमें कुछ न कुछ पाप जरूर मिला हुआ होता है।
0: सही बात है सर।
1: कोई भी व्यापार करो, कोई भी करो, उसमें पाप जरूर होते हैं। और जो कर्म कर रहे हैं पिछले कर्मों का तो भोग ही रहे हैं हम
0: जी,
1: लेकिन इस उम्र में तो नहीं करे हैं। अगर अभी करेंगे तो आगे भोगना पड़ेगा। करोड़ों जन्मों के पाप जो आज एकादशी है वो खत्म हो जाते हैं करने से।
0: बिल्कुल सही।
1: सुनने से, पढ़ने से सब खत्म हो जाते हैं
0: जी।
1: लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है तो भगवान ये कहते हैं चलो तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो दान तो करो।
0: हाँ।
1: भजन पाठ नहीं कर सकते, कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि टाइम नहीं है।
0: लेके
1: शाम तक बस धंधे में
0: भाग दौड़ में लगे हुए हैं सभी।
1: इसलिए मेरा निवेदन इन सारों से बचने का उपाय एक ही है कि कुछ ना कुछ अपने हिस्से में 10% 5% दान देते रहोगे तो आपका जो है पैसा शुद्ध हो जाएगा
0: जी। सही बात है सर कि जैसे ये समय जो हमारे लिए, वैसे तो दान देखिए कभी भी करिए, कोई उसके लिए समय नहीं है, लेकिन अब ये खास समय है तो इसमें जो भी अपनी स्वेच्छा से कुछ भी आप दान कर सकते हैं, चाहे अन्न का दान है, चाहे आप बना बनाए भोजन दें, कपड़े दें, जल दान है।
1: आप जल दान करें ना।
0: बिल्कुल।
1: ये कैंपर वगैरह है, कैंपर रखा हो हॉस्पिटल में है, गरीबों के है, कहीं भी जो जल दान बहुत बड़ा दान है।
0: बिल्कुल।
1: अन्न से भी जाता है
0: जी। और देखिए पशु पक्षियों के लिए भी अगर आप अलसी वगैरह लगा रहे हैं, खेली में पानी भरवा रहे हैं, तो वो भी, वो तो सबसे ही बड़ी चीज है,
1: बहुत ही बड़ी है। कौन करता है ऐसा?
0: जी जी। नहीं नहीं, आपका संदेश है सर, और मैं समझती हूँ कि आप जो भी संदेश देते हैं हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचता है। और देखिए कहीं ना कहीं अपने बीकानेर शहर में तो ये चलन भी रहा है कि इस तरीके के काम बहुत होते हैं सर।
1: बिल्कुल हो रहे हैं और करने चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर नहीं करोगे तो फिर अगले जन्म में तुम्हें भी क्या है कि ये भिखारी बनना पड़ेगा। भिखारी ये कहते हैं हम भीख मांगने नहीं आए, आपको सन्नत देने आए हैं कि तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे अगर कुछ नहीं दोगे।
0: सही, इसलिए श्रेष्ठ कार्य करें।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: अतिथि की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें।
0: बिल्कुल। सेवा जो है वो परमो धर्म है, और सेवा करना हम सभी के लिए जरूरी है।
1: भगवान की इतने जल्दी प्रसन्न होते हैं।
0: जी हाँ, सही कह रहे हैं।
1: और आशीर्वाद देते हैं अगर ये
0: डायरेक्ट मिलता है सर
1: ना।
0: हाँ। और वो आशीर्वाद हमें नजर भी आता है।
1: बिल्कुल। जैसे आज आपने कोई काम किया, चाहे गरीब का है चाहे माता पिता का, आपको हाथों हाथ मिल जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपना कर्म श्रेष्ठ करें, और बाकी फल की चिंता तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें।
1: ऊपर वाले कर्म बढ़िया होने चाहिए अपने। बस भगवान ये कहते हैं, आप भगवान का

0: पण अगर कर्म अच्छे है ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको कोई रोक सके,
1: रोक नहीं सकती। बिल्कुल सही सही, बहुत अच्छा संदेश है सुभाष जी आपका, और देखिए सभी लोगों तक पहुंचेगा, और हम समझते हैं कि जो भी लोग सुनेंगे वो अमल में जरूर लेकर के आएंगे।
0: 10 वचन भी लेना तो मेरा तो बताया हुआ बिल्कुल साक्षात हो गया एकदम।
1: जी जी
0: बढ़िया हो गया,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: मैं ये सोचूंगा कि मैंने पुण्य का काम
1: कर लिया। नहीं सर, संदेश देना भी तो बहुत बड़ी बात है, मुझ में ज्ञान तो बहुत है लेकिन मैं किसी को बता ही नहीं रही हूँ, तो उस गान का क्या फायदा।
0: बड़ी चीज है ज्ञान, बहुत बड़ी चीज है,
1: बिल्कुल दूसरों तक पहुँचाना सबसे बड़ी बात।
0: मिल गया ना तो उसको शांति मिल गई।
1: अब गाना बता दें सर, ऐसा ही अच्छा सा
0: अच्छा सा गाना सुन ले आप।
1: जी बताएं,
0: हेमंत कुमार की आवाज में
1: है। जी हाँ,
0: जाल फिल्म का।
1: जी ये रात ये चांदनी फिर का। सर आपने हमें फोन किया, बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। श्रोताओं ये देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़े हैं। हेलो
1: नमस्ते जी।
0: नमस्कार, परिचय दे दें अपना।
1: दाम खोपरा वाली कपूरनपुरगढ़ जिला श्री गंगानगर से विनोद बारह का निवेदन कर रहा हूँ।
0: विनोद जी आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल, आप इतना प्यार करते हैं तो हम भी मजबूर रहते हैं प्रोग्राम सुनने के लिए, फोन करने के लिए।
0: जी बिल्कुल, देखिए ये प्यार की बात जो आपने कही है ये दोनों तरफ से है।
1: बिल्कुल है बिल्कुल, मैं हाँ। तो बहुत सालों से प्रोग्राम सुनता रहा हूँ हाँ। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, कुछ संदेश मैं देना चाहूँगा कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और आने वाले दिनों में रेड अलर्ट कर रखा है
0: जी
1: मौसम विभाग ने।
0: हाँ चल रहा है बिल्कुल।
1: तो गर्मी से बच के रहिए और घर से निकले तो अपना पानी पीकर साफा बांध कर निकले और छोटे बच्चों का भी ख्याल रखें।
0: जी बिल्कुल,
1: कुछ छोटे छोटे पक्षी हैं उनका भी ध्यान रखें और पेड़ पौधों पर पानी का जो परिंदा है वो बनाकर रखें ताकि वो पानी पी सके। तो मैं ये जरूर श्रोताओं को संदेश दे रहा हूँ।
0: देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण आपने बात कही कि पक्षियों के लिए जो है वो पानी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है।
1: सकते वो कह नहीं सकते
0: हाँ।
1: हमें पानी पीना है तो हम खुद हम मानवता के देखिए उनको जो अधिकार है जो कुछ है उनके लिए प्रति काम करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: पशु पक्षियों के लिए।
0: और गर्मी तो देखिए अभी तो एक महीने तो हमें बिल्कुल जबरदस्त गर्मी का ही सामना करना है। एक महीने तो कहीं कोई राहत नहीं है अभी। हालांकि कहने को ये नौ तपा चल रहा है, नौ दिन यानी कि जबरदस्त गर्मी रहने वाली है। लेकिन वही है ना विनोद जी की घर से बाहर तो देखिए निकलना जरूरी है। बिल्कुल, व्यवस्था बना करके निकले तो आप परेशानी में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि
1: कि गर्मी से बच के रहिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना स्वास्थ्य का।
0: जी बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे सभी जो साथी हैं श्रोता हैं वो सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मौसम है देखिए ये तो परिवर्तन तो होगा ही, आज गर्मी है तो आने वाले समय में मौसम ठीक भी होगा। लेकिन हाँ हम अपने आप को बचा करके रखें और ध्यान रखें। जी आप गाना बता दें
1: के नाम ले लें।
0: जी हाँ लीजिए।
1: मेरे दो लड़के हैं विशाल बारह सा, विकास बारह सा, गुड़िया है सगुन बारह सा, रोशनी बारह सा।
0: जी
1: हम सब जगन फिल्म का गीत सुना चाहते हैं, रंग और नूर की बरात किसे देखते हैं।
0: जी जी, तो विनोद जी आपने हमें फोन किया और महत्वपूर्ण संदेश दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया।
1: ओके
0: धन्यवाद।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से। श्रोताओं आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़े हैं। हेलो
1: नमस्ते मैडम।
0: हाँ जी नमस्कार,
1: राधेश्याम कटारिया श्री कर्णपुर जिला गंगना से बोल रहा हूँ।
0: जी नमस्कार राधेश्याम जी, कैसे हैं आप
1: जी? बढ़िया फर्स्ट क्लास, आपके सुनाओ मैडम?
0: बस बढ़िया है सर, गर्मी का आनंद ले रहे हैं सभी लोग।
1: हाँ जी गर्मी खूब पड़ी है, नौतपा चल रहा है।
0: अच्छा नौतपा चल रहा है, यानी कि गर्मी हम सभी जो है वो एक साथ ही महसूस कर रहे हैं।
1: हाँ जी मैडम,
0: है ना। और ये मौसम तो ऐसा है, देखिए इसमें सब यही चेतावनी है हमारे लिए कि हम दिन के समय में घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलना ही पड़ता है तो अपने तन को जो है वो पूरा ढक करके लिखने, सर से लेकर के पैर तक ढका हुआ होना चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। यही संदेश हमारा जो है ये इस समय सबसे महत्वपूर्ण है।
1: हाँ जी मैडम, मैं तो यही कहता हूँ बाजार की तली चीजें तो इस टाइम खानी ही नहीं चाहिए, इससे फूड पॉइजन तो होता ही है और सेहत भी नुकसान होता है।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जो हमें मार्केट में जो खाना मिल रहा है, या हम देखते हैं ना जगह जगह जो ठेले लगे हुए हैं, थड़ियों पे लगे हुए हैं, वो कब से खाना बनाना शुरू करते हैं और शाम तक आकर के वो बेचना शुरू करते हैं, तो पूरे दिन भर में वो खाना कैसा हो जाता है जब बनता है, और उसके बाद में हम उसको जब खाते हैं तो हमारी सेहत बिगड़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इसलिए हाँ कोशिश यही करें कि अपने घर का ही खाना खाएं और हल्का भोजन करें।
1: हाँ जी मैडम।
0: जी राधेश्याम जी, बहुत अच्छी बात आपसे हुई हमारी।

0: और अब आप गीत बता दें कौन सा सुनना चाहते हैं।
1: ये लैला मजनू का गीत है, हुसन हाजिर है बट किसे जा पाने को।
0: जी लता जी की आवाज में ये गाना है।
1: मैं घर के सदस्यों का नाम लेना चाहता हूँ मैडम।
0: जी लीजिए।
1: सरोज कटारिया, वन्य कटारिया
0: जी,
1: नेहा कटारिया, हिमांशु कटारिया, वैभवी कटारिया,
0: जो आपके परिवारजन है इनका हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में और सुन लेते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाती है बुधवार को दिन में 11 से 12 बजे और इसका प्रसारण होता है शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से। आइए देखते हैं अगले हमारे साथी कौन जुड़े हैं। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मंसूर अली जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कैसे हैं मंसूर जी?
1: सब अच्छे। पानी पीने ठंडो आकाशवाणी बीकानेर।
0: अच्छा, यो जी बिल्कुल आकाशवाणी बीकानेर। तो देखिए, आप जैसे श्रोताओं के कारण ही जो है वो इतने अच्छे प्रोग्राम्स बन पाते हैं हमारे और आप सभी तक पहुंच पाते हैं। तो आप जैसे जी बहुत अच्छी बात है मंसूर जी की हमारे जो श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं वो इन प्रोग्राम्स को इतना महत्व देते हैं और समय समय पर उनके हमें सुझाव मिलते रहते हैं जिससे हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर बना पाते हैं। मंसूर जी बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: गीत सुनना है कभी धूप तो कभी छांव, एक गांव में मिलते ये
0: सुख दुख दोनों रहते जिसमें। हाँ बिल्कुल, और कभी धूप और कभी छांव नहीं, अभी तो आप केवल धूप ही धूप की बात कीजिए। जी बिल्कुल, अभी तो धूप के अलावा कुछ नहीं है और एक महीने तक धूप ही धूप है सर।
1: जी
0: बिल्कुल, और जीवन चलना चाहिए बस। मंसूर जी आपने हमें फोन किया इसके लिए बहुत शुक्रिया। जी हाँ, मित्रों के नाम लीजिए।
1: फरियाद अली उसका राजू भाई गोपाल भाई पुरुषोत्तम
0: जी, आपके सभी मित्रों का स्वागत हम करते हैं और सभी की पसंद पर सुन लेते हैं। आइए ये प्यारा सा गीत।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। श्रोताओं आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़े हैं। हेलो,
1: आवाज के हम सफर साथियों को साधुन शहर जिला सिंह गंगानगर से राम कुमार युवार का प्यार भरा नमस्कार। सिस्टर,
0: आवाज के साथी हमारे राम कुमार जी का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। जी बताएं राम कुमार जी कैसे हैं?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ और अब गर्मी का मैं कह सकता हूँ कि लुत्फ उठा रहा हूँ।
0: अच्छा, लुत्फ उठा रहे हैं आप? पहले सदस्य हैं सर जो कह रहे हैं कि लुत्फ उठा रहे हैं आप,
1: क्योंकि प्रकृति के साथ हमें चलना पड़ेगा।
0: जी हाँ बिल्कुल, ये बात सही है आपकी।
1: और प्रकृति के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो हम दुखी होंगे। और आपने जो कहा है कि पहला व्यक्ति है, क्योंकि सभी लोग इस चीज से बहुत परेशान है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे कि अपनी खुद की गलतियों की वजह से हम परेशान हैं।
0: ये बात सही है सर आपकी। प्रकृति के लिए हम जो भी आज तक करते आए हैं उसी का ये असर है कि तापमान दिनों दिन हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। श्रोताओं, ये प्रकृति जो है ये अपना रूप हमें दिखाती है और कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं इसके दोहन के। बढ़ती हुई आबादी, बड़ी बड़ी इमारतें, कटते हुए पेड़, जंगलों का विनाश, वनों का हाश, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकृति पर असर डालते ही हैं। और ये प्रकृति हमें इस गर्मी के रूप में अपना रौद्र रूप दिखाती है, प्रचंड रूप दिखाती है। इस प्रकृति को संवारना आपको और हमें ही होगा, जिससे कि हम आने वाले समय में कुछ राहत पा सकें। और आइए अब सुनते हैं राम कुमार जी की पसंद पर काजल फिल्म का ये गीत।

0: सबसे हसी ए नाम है ये, चूल्हे में दो नाजुक हो तुम।
1: श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे और इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है बुधवार को दिन में 11 से 12 बजे। हमारे फोन नंबर है 0151252801 और 0151252842। ये दोनों ही नंबर हैं हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो मिलाइए एक नंबर और बनिए हमारे हेलो बीकानेर कार्यक्रम के हम सफर। तो आइए देखते हैं हमारे इस सफर में अगले साथी हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो
2: जी,
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: ताहिर हुसैन बोल रहा हूँ।
1: ताहिर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे हेलो बीकानेर कार्यक्रम में।
2: जी,
1: आप क्या काम करते हैं ताहिर जी?
2: हम महिला प्रशिक्षण देते हैं जिसमें महिलाओं को सिलाई, बीटी, फैशन डिजाइन,
1: अच्छा,
2: कंप्यूटर,
1: मतलब
2: प्रशिक्षण देते हैं।
1: प्रशिक्षण देते हैं, आपने एक ऐसी जगह पर सेंटर बना रखा है जहाँ पे महिलाएं आती हैं और सीखती हैं।
2: जी,
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा काम है ताहिर जी की। देखिए, महिलाओं को एक छत के नीचे हुनरमंद होने का मौका मिले तो बात ही क्या है। कब से कर रहे हैं ताहिर जी आप ये काम?
2: ये 2 ईयर्स के करीब हो रहे हैं अपन को।
1: अच्छा जी, और किस जगह पर है, किस क्षेत्र में आपने ये संस्थान अपना बना रखा है?
2: ये अपने संस्थान गजनी रोड चुंगी चौकी बंगला नगर जैसलमेर हाईवे पे बना रखा अपने।
1: जी जी, तो अभी हाल फिलहाल में आपके पास कितने प्रशिक्षार्थी हैं?
2: समथिंग यही 100 के करीब है।
1: अच्छा, 100 महिलाएं आपके पास प्रशिक्षित हो रही हैं?
2: जी, अच्छी महिला है, उसमें भी काफी महिलाएं दूर दूर से विदेश से आ रही है।
1: अच्छा,
2: पास में अभी सूरत से महिला भी आ रही है, जो सूरत से महिला आई है जो यहाँ बीकानेर में रह रही है।
1: अच्छा अच्छा, सूरत से आकर के और बीकानेर में रह के प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।
2: जी,
1: तो अभी
2: बहुत अच्छा सिखा रहे हैं राजपूती पोशाक अपने संस्थान की स्पेशल। अच्छा, ये ड्रेस है जो अपन महिलाओं को स्पेशल सिखा रहे हैं।
1: जी, बहुत बहुत अच्छी बात है ताहिर जी की। देखिए, महिलाओं को घर बैठे अगर काम मिल जाए तो वो बखूबी कर सकती हैं और घर भी संभला रहेगा और बाहर का काम भी और आमदनी भी होती रहेगी उनकी।
2: बिल्कुल।
1: बहुत अच्छा लगा ताहिर जी आपसे बात करके और आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके माध्यम से मैं सोच पा रही हूँ कि ये महिलाएं जिनको आप प्रशिक्षित कर रहे हैं वो कितनी खुश होती होंगी जब वो हुनरमंद होती होंगी।
2: तो एक बहुत कुछ होती है, कुछ कुछ महिलाएं तो हमारे से प्रशिक्षण लेने के बाद में भी काफी समय तक अभी तक मेरे पास में चल रही है, जो 1 ईयर से कि सर हम संस्थान में यहाँ आके इतना खुश है कि एक फैमिली हमें के अंदर है।
1: हाँ, एक अच्छा माहौल मिलता है।
2: अच्छा माहौल है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा माहौल है। उसके बाद में हम महिला पे एक बहुत अच्छा ध्यान भी देते हैं, उसके ध्यान देते हैं कि महिला किस तरफ कौन से स्किल की तरफ जाना चाहती है।
1: जी जी बिल्कुल, उसके अंदर के जो गुण हैं उसको पहचान करके आप उसी क्षेत्र में उसे आगे बढ़ा देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: बहुत अच्छा लगा ताहिर जी आपसे बात करके और हम चाहेंगे कि आप हमारे फोन नंबर नोट कर लें और इस कार्यक्रम की हम रिकॉर्डिंग करते हैं बुधवार को 11 से 12 बजे और इसका प्रसारण करते हैं शनिवार को 11 से 12 बजे।
2: जी,
1: तो आप हमारे कार्यक्रम से हमेशा जुड़े।
2: जी,
1: बहुत शुक्रिया।
2: जी, बहुत धन्यवाद।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। श्रोताओं आइए देखते हैं हमारे अगले साथी हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो हाँ जी कौन बोल रहे हैं।
1: नमस्कार मैं हर्षित बोल रहा हूँ।
0: हर्षित बोल रहे हैं, हर्षित कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैम, आप बताइए।
0: ठीक है बस ठीक है, गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा सावधानियां रखने वाली बात है।

0: है। सभी के संदेश हमारे पास आ रहे हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ये सभी तक पहुंचे कि भाई गर्मी है तो थोड़ा सा सब अपना ध्यान रखें।
1: जी हाँ मैम, गर्मी है तो सब रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गर्म भारत देश ही हो रहा है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिशन की?
1: हाँ मैम, अभी तैयारी ही चल रही है और तो अभी तो बाहर आए हुए हैं, अभी राजस्थान से बाहर हूँ।
0: अच्छा, राजस्थान से बाहर हैं आप?
1: हाँ जी मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या गर्मी कुछ कम लग रही है आपको?
1: नहीं मैम, पूरे रास्ते में ट्रेन में भी सब जगह भी बराबर गर्मी है।
0: बराबर ही है, मतलब अपन ये सुनते हैं कि राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़ती है, लेकिन आप जहाँ भी हैं, जिस भी क्षेत्र में है, वहाँ पर भी यही स्थिति है।
1: बिल्कुल मैम, इस बार तो वो अल नीनो आपने सुना होगा।
0: जी,
1: अल नीनो का बोल रखा है,
0: प्रभाव है,
1: प्रभाव है।
0: तो उसकी वजह से हाँ सभी जगह पे, मतलब कहने का मतलब है कि गर्मी है। जी जी, हर्षित आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर से बाहर हैं आप तो थोड़ा खाना पीना भी आपका परिवर्तित होगा, है ना, और बाहर का खाना भी खाना ही पड़ेगा अगर आप बाहर हैं तो इसलिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, है ना। और
1: बिल्कुल मैम, मैंने तो फलों पर, सिर्फ और सिर्फ फलों पर जोर दिया हुआ है, जितने फल खाएं उतना बेहतर है।
0: जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फल खाएं, पानी पिए, नींबू पानी पिए, है ना, ठंडे पेय पदार्थ पिए, तरबूज वगैरह खाएं, तो हम इस गर्मी से अच्छे से निपट पाएंगे। हाँ, तो हर्षित आप बताएं, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैडम, सीता गीता मूवी है, उसका गाना है, जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल।
0: हाँ, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई।
1: जी कोई,
0: बहुत अच्छा गाना है और जिंदगी से जुड़ा हुआ, और सही बात ये भी है कि कभी कोई पास होता है, कभी कोई फेल होता है, और इसी तरीके से जिंदगी चलती चली जाती है।
1: जी,
0: जी, बहुत शुक्रिया हर्षित, आपने हमें फोन किया।
1: जी, थैंक यू।

जा तेरे रब के, दिल मत जाना जलना बच के।

0: पड़ गई एक कदम पीछे।
1: अरे बैठ।
2: झूम के पीछे घूम और नचने वाली लोग बजाएंगे खुश होकर ताली
1: ताली ताली ताली ताली।
2: झूम के पीछे घूम और नचने वाली लोग बजाएंगे।

श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत गीत हमने सुना सीता और गीता फिल्म से। इस गीत के साथ ही अब आज का यह हेलो बीकानेर कार्यक्रम यहीं समाप्त करना होगा, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे आकाशवाणी बीकानेर की टीम का सहयोग रहा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रेवत राम देघा, संयोजक थे अमित सिंह और मैं थी आपके साथ प्रतिमा तिवारी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: मंदिर समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी

0: की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय शगुन चोपड़ा।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12:05 हुए हैं। यह सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

10:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत और 12:40 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। मैं सुनेंगे अपने कार्यक्रम में यह जगत दिन में 1:05 पर और दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

कल संध्या 5:05 पर युवा साथी सुनेंगे फिल्म वाली कार्यक्रम और फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 6:05 पर। ग्रामीण में सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत संध्या 7:00। संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत और रात्रि 8:00 आप सुनेंगे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्य गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय का होगा, प्रस्तुति श्री रेंद्राम लेगा की और संयोजन श्री अमित सिंह का होगा। लोक संगीत हमारे श्रोता सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। संध्याकालीन समय में फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। युवाओं के लिए युवा भारती कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से भी करेंगे रात्रि 9:30 पर और आकाशवाणी दिल्ली से भी करेंगे रात्रि 10:00 संगीत का अखिल

215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोल मालू चैनल है। मध्याह्न के 12:10 हुए हैं। ये जब सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए भाई गुरमीत सिंह रागी और साथियों से ये शब्द।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारो चैनल से बोल रहे हैं। नीचे आप सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में एक गीत। फिल्म का नाम है दो कलियां।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।

0: आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

Ah,

कह लग जाए हथकड़िया मैंने तेरी बाह पकड़ ली, अब कह लग जाए हथकड़िया मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझसे नियत कर ली।

0: प्यार भर कोई तोहमत न आए, चाहे अंबर फटे साथ छूटे न हम।
1: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम मुकेश्वर बीकानेर की धुन और चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को ही अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली
1: राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये भारत की पहली यात्रा है। वे आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। वे कल नई दिल्ली में म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। उनका सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति यू मिन आंग की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों के और अधिक मजबूत तथा प्रगाढ़ होने की आशा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी पहले, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में विशेष स्थान रखता है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देश के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस होंगे। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जो आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल चौहान को आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदाई समारोह में जनरल चौहान ने कहा कि तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सेवानिवृत्त होना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। चार दशकों से अधिक की सेवा के बाद जनरल चौहान ने अपने कार्यकाल

0: हल को संतोषजनक और उत्कृष्ट बताया। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुए अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और पेयजल संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा श्रमदान के साथ जागरूकता आयोजन रखे जा रहे हैं। इसी क्रम में सरहदी जिले जैसलमेर में रिचार्ज शॉफ्ट संरचनाओं का लोकार्पण किया गया। इनके जरिए जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाई गई। सवाईमाधोपुर के बाडूलास में गंभीर नदी पर बने एनीकट पर जल पूजन और पीपल पूजन का आयोजन हुआ। इसी तरह पाली जिले के सादड़ी में ऐतिहासिक प्रतापगढ़ बावड़ी पर भी कार्यक्रम रखा गया। जिले के सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने डायवर्जन चैनल का लोकार्पण किया। इस दौरान निकाली गई प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। वित्तीय सेवा विभाग ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों से संबंधित जानकारी लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह पीएसबीए के सहयोग से विकसित किया गया है। पीएसबीए देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक केंद्रीकृत कंपनी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि पोर्टल वित्तीय प्रणाली से जुड़े ऐसे बैंक खातों, बीमा दावों, शेयरों, लाभांश और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाता है जिनका कोई दावेदार नहीं है। कोटा जिले में पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारी ब्रुसेलोसिस का प्रकोप दिखाई देने पर चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। नगर निगम की बंधा गौशाला और दो निजी गौशालाओं की 11 गायों में इस रोग की पुष्टि हुई है। संक्रमित गायों को आइसोलेट किया गया है। नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर खुशाल सोलंकी ने बताया कि इस बीमारी से संक्रमित पशु का दूध पीने और इनके संपर्क में आने वालों में भी इनकी चपेट में आने की आशंका बनी रहती है। सूचना मिलने पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टीम गठित कर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की ओर से बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान शुरू हुआ। 29 जून तक चलने वाले अभियान के तहत 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी। पाली में सभी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और जिला अस्पताल में अधिक से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज 30 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। कल शाम मौसम में अचानक बदलाव के बाद उत्तर पूर्वी जिलों में तेज अंधड़, बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू और करौली सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। राजधानी जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम का ये बदला हुआ मिजाज बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोल मारो चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 1:06 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मिलना जगत।

0: खड़ा है वो, जहाँ लहरें आकर पैरों को सहलाती हैं और संगीत की धुनें दिलों को छू जाती हैं। जी हाँ बहनों, इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ आकाशवाणी के इस बेहद खास मंच पर आपका स्वागत करती है आपकी अपनी रेडियो सखी सपना व्यास और मेरे साथ है मेरे रेडियो सखी बिंदु जी। आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सपना, आपको मेरी प्यारी सखियों को भी सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सपना, सच कहूं आज तुमने जो पंक्ति पढ़ी है ना, हमारे स्टूडियो का माहौल एकदम ताजा और खुशनुमा हो गया है। ऐसा लग रहा है हम सचमुच किसी समुद्र के किनारे हैं। अरे बिंदु, जब आज का दिन इतना खास है तो शुरुआत भी तो एकदम जादू होनी चाहिए ना। तो बहनों, आज है 30 मई, यानी हमारे देश के सबसे खूबसूरत और जीवंत राज्यों में से एक, मालूम है बिंदु क्या है आज? गोवा का स्थापना दिवस। बिंदु, साल 1987 में आज ही के दिन गोवा को भारत के 25वें पूर्ण राज्य का गौरव हासिल हुआ था।
0: बिल्कुल ठीक कहा सपना। जैसे गोवा नाम सुनते ही हमारे जो दिमाग में है ना, बात आ जाती है, रेतीले समुद्र किनारे, नारियल के पेड़, आंखों के सामने गुनगुने समुद्र की लहरें और ठंडी ठंडी हवा, वहाँ क्या बात है, मुस्कान आ जाती है। लेकिन सपना, हम अपनी बहनों को बता दें कि गोवा सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, बल्कि कला, संस्कृति, संगीत और बेमिसाल लोक परंपराओं का बहुत बड़ा
1: है। अरे वाह, क्या बात की बिंदु तुमने। सच में गोवा की सबसे बड़ी ताकत है वहाँ की विविधता। और जानती हो सखियो आप लोग कि गोवा के इतिहास में जो पुर्तगाली और भारतीय संस्कृतियों का मिलन हुआ, उसने वहाँ के संगीत को एक अनोखा रंग दे दिया। बिंदु, तुमने वहाँ के मांडो संगीत के बारे में सुना तो होगा ना?
0: बिल्कुल सुना है, सुना है मैंने सपना। मांडो जो है ना, गोवा की एक जगह है ना। बहनों, मांडो एक ऐसा पारंपरिक संगीत है जिसमें पश्चिम और भारतीय संगीत का इतना खूबसूरत मेल बनता है जो दिल को, उसे सुनकर दिल खुश हो जाता है ना। इसमें गिटार और वायलिन की धुन पर लोग गाते नाचते हैं। इसे ज्यादातर प्यार विरह और पुरानी यादों की मीठी मीठी
1: कहानी होती है। और बिंदु, सिर्फ मांडो ही क्यों, वहाँ का कंठार है, कुंकणी पोप भी तो कमाल का है।
0: हाँ,
1: लेकिन बिंदु, मुझे गोवा के संगीत में जो चीज सबसे ज्यादा खींचती है वो है, मालूम है, वहाँ का पारंपरिक ढोल जिसे वहाँ के लोग घूमट कहते हैं। जब वो मिट्टी की बनी उस घूमट पे थापड़ती है ना बिंदु, तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं।
0: वाह क्या बात है। तो फिर ऐसे देर किस बात की, हमारी बहनें जब का पैर ही जब थिरकने आपने सुना ही दी, तो हमारी बहनों को गोवा के लोक नृत्य की सैर भी करवा देनी चाहिए जो पूरी दुनिया में मशहूर है। जैसे वहाँ की फूली नृत्य है, यह नृत्य खास कर महिलाएं करती है गणेश उत्सव या व्रतों के दौरान, है ना, जब महिलाएं घेरा बनाकर एक अजीब सी ऐसे से निकलती है, तो हिंदी है तो सपना वो जो मुद्रा होती है देखनी है।
1: बिल्कुल, और फुगड़ी के साथ साथ एक और बहुत ही प्यारा नृत्य है, उन्हें देखनी, इसका मतलब ये होता है सुंदर दृश्य। इसमें पारंपरिक नौवारी साड़ी पहनकर महिलाएं नाचती हैं और इसमें एक गजब की शालीनता और आकर्षण होता है। ऐसा लगता है बिंदु कि जैसे हर एक मुद्रा कोई कहानी बयां कर रहा हो।
0: अरे भाई, पुरुषों का जो ना ये नृत्य होता है ना, वो बहुत अच्छा है। ये योद्धाओं की तरह वो ना तलवार हाथ में लेकर जो नाचते हैं, मैंने कई बार देखा उसको, तो वो बहुत मतलब कोमलता नृत्य और संगीत के साथ साथ में वहाँ की धैर्य, मतलब बहादुरी जो है, शौर्य जो है उसका, वो भी नजर आता है। सिर्फ संस्कृति में गीत संगीत ही नहीं, शौर्य भी है ना, तो सभी रंगों से सजा हुआ हमारा गोवा जो है बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है।
1: और बिल्कुल सच में बिंदु, आज गोवा स्थापना दिवस पर गोवा के बारे में इतनी बातें करके तो ऐसा लग रहा है कि हम खुद उस उत्सव का हिस्सा बन गए हैं ना।
0: हाँ,
1: और हमारी हमारी बहनें सोच रही होगी जो भी छुट्टियों का जो ट्रिप है ना, हाँ, तो हमारा गोवा तो
0: नहीं बोलो।
1: और बिंदु, हमारी बहनों का मन भी तो उस हसीन मंजर को जाने के लिए भी मचल रहा होगा ना। तो चलिए इस खूबसूरत बातचीत के अब शब्दों को सुरों की तरफ मोड़ते हैं। तो मैं एक पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। बातचीत तो चलो खो जाते हैं आज सुरों के इस समुन्दर में, एक अजीब सा सुकून है गोवा के इस मंजर में, लहरें भी गुनगुनाते हैं जहाँ खुशियों का तराना, लो आ गया है आपके लिए संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: बिंदु सच में गोवा के उन लोक नृत्यों की थाप और वहाँ के संगीत का जादू तो देखो ऐसा ही है कि भी पैर अपने आप थिरकने लगे और ये गाना सुनकर मेरे भी पैर थिरकने लगे थे। और गोवा स्थापना दिवस के इस बहाने आज हमारी बहनों को भी वहाँ की संस्कृति की सैर करके बड़ा मजा आया होगा ना।
1: बिल्कुल सही कह रही हो, संगीत और संस्कृति की यही जो खूबसूरती होती है इंसान को घर बैठे बैठे उस जगह की हवा महसूस करवाने को है ना। लेकिन जानते हो सब गोवा के इस समुंदर और वहाँ की खूबसूरती के नजारे के बीच मेरे दिमाग में एक और जरूर बात चल रही है।
0: अच्छा बिंदु, ऐसी कौन सी बात चल रही है जो तुम्हारे दिमाग में, जरा मुझे और हमारी जो सखी है उनको बताओ।
1: सपना, मैं सोच रही थी कि ये जो हमारे पर्यटन का क्षेत्र है गोवा ही क्या, मतलब वो भले ही राजस्थान हो या जम्मू कश्मीर हो, ना देश का कोई भी कोना जो घूमने फिरने छुट्टियां बिताने के लिए अच्छा है, तो आज के जो दौर में ये क्षेत्र हमारी बहनों के लिए तरह

0: जी और हमारी जो सखी है उनको बताओ। सपना, मैं सोच रही थी कि ये जो हमारे पर्यटन का क्षेत्र है ना, गोवा ही क्या, मतलब वो भले ही राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, ना देश का कोई भी कोना जो घूमने फिरने या छुट्टियां बिताने के लिए अच्छा है, तो आज के जो दौर में ये क्षेत्र हमारी बहनों के लिए तरक्की और रोजगार का सबसे बड़ा समुद्र बन चुका है।
1: बिल्कुल, तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई। और आज हमारे इस महिला जगत में हमारी बहनों के लिए इससे बेहतर चर्चा और हो भी क्या सकती है बिंदु। सच में टूरिज्म एक ऐसा चमकता हुआ क्षेत्र है जहाँ महिलाएं अपने हुनर के दम पर अपनी किस्मत खुद लिख रही है।
0: बिल्कुल सपना, सबसे अच्छी बात जानना क्या है, बहुत सी बहनें सोचती है कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री चाहिए या अंग्रेजी बहुत फराटेदार चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप में मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसका हुनर है हमारे अंदर, और अपनी बात करने का जो सलीका है वो बहुत अच्छा है, और या फिर हाथों में जो पारंपरिक कला है तो भी हम अपने कमाल उसमें कमाल दिखा सकते हैं। तो देखिए, जीवन में अगर कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो।
1: और सही कहा बिंदु, आपकी पंक्तियों को तो सुनकर मेरा भी मन हो गया कि भाई सही में ये ऐसा करना चाहिए। अब जैसे आजकल होम स्टे का देखो कितना चलन बढ़ गया है, दूर दराज से आने वाले जो टूरिस्ट हैं अब वो बड़े बड़े होटलों को के बंद कमरों में तो रहना नहीं चाहते हैं, वहां रुकना भी नहीं चाहते हैं कि वो किसी स्थानीय परिवार के साथ रहे, वहां के रहन सहन को वो देखे। और हमारी जो बहनें हैं वो अपने घरों के खाली कमरों को अच्छे से सजाकर सैलानियों को वहाँ ठहरा सकती है।
0: देखो, मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो हमारे मन करता है कि ना सिर्फ कमरों में बैठ के हम क्या करें, यहाँ के लोगों से मिलने बातचीत करें, क्या क्या लड़ते हैं हम भी जाने, हमें सिर्फ रहने की बात क्या, वो अपनी असली जादू तो तब बताती है जब हाथों से बना स्वादिष्ट खाना सुबह खिलाती है, पारंपरिक गर्मा गर्म खाना हो परोसा जाता है, उनकी अंगुलियों का जो स्वाद होता है वो जहाँ जब भी जाते हैं उसको साथ लेके उन यादों को साथ लेके जाते हैं, और इस तरह से उनका खड़ा हो जाता है एक शानदार बिजनेस।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और जो बहने घर से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती है उनके लिए भी राहें खुली हैं। बिंदु, आजकल महिला टूर गाइड की तो देखो मांग कितनी बढ़ रही है, और हमारे देश का जो इतिहास है, हमारे जो किले महल है उनकी कहानियां जब वो एक महिला सुनाती है ना तो उसमें एक अलग ही जुड़ाव और अपनापन होता है। विदेशी पर्यटक भी महिला गाइड्स के साथ खुद को क्या है एक सुरक्षित महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सपना, उसके साथ ही एक और बहुत बड़ा जरिया है हमारा हस्तशिल्प जो है ना, तो वो जो है बहुत टूरिज्म इस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है ना, तो अगर वो वहां पर उसको भी यूज करते हैं तो बहुत फायदे वाली बात है, एक आनंददायक भी काम है और साथ में अर्निंग का काम भी है।
1: बिल्कुल,
0: तो वहीं पर कोई उनको याद अपने साथ ले जाना चाहते, जैसे हम भी कुछ ना कुछ वहां से खरीद के लाते हैं, परिवार में आते भी हमारे लिए, बच्चे भी बोलते हैं हमारे लिए क्या लाए, परिवार में दूसरे लोग भी बोलते हैं, तो जो बाकी सारे सामान सब जगह मिलता है लेकिन वहां की जो विशेषता होती है वो वहां के लोगों के लिए जो हम साथ लेके जाते हैं,
1: हस्तकला कहने का मतलब है ना,
0: बिल्कुल हस्तकला होती है, मतलब हमारे रास्ता में आते तो मतलब दूसरे
1: उधर कढ़ाई
0: है, जैसे कहीं जहाँ बांस होता है वो बांस की टोकरियाँ बैग वैग होते हैं, तो वो ऐसा ले जाना चाहते हैं, सजावट के लिए सामान है, पारंपरिक सामान है, अचार है, हमारे इधर तो बड़ी है, पापड़ है, मिठाइयाँ है, और टूरिस्ट मार्केट में उनके हाथों से बनी जो चीजें होती है स्वयं सहायता समूह के जरिए भी हमारी बहने जो ग्रामीण बहने भी बहुत आगे बढ़ चुकी है।
1: बिल्कुल सही कहा बिंदु तुमने, और तुम्हारी इस बात पर मुझे वो भी पंक्तियां याद आ रही है जो हमारी आज की हर आत्मनिर्भर बहन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हौसलों के पंख तैरते हैं जब उम्मीद के आसमान में, तो हर राह आसान हो जाती है इस जहान में,
0: बहुत सुंदर बनती है सचमुच, जब हौसला बुलंद है तो रास्ते अपने आप बनते चले जा रहे हैं। आज पर्यटन का क्षेत्र हमारी बहनों को सिर्फ आसमान पर पहुंचा ही नहीं गया, चाहे वो खुद का कोई कैफे चलाना हो या फिर मतलब और भी कोई ब्लॉगर बनाना है या फिर खुद की छोटी सी ट्रैवल एजेंसी लेनी है, तो ये सारी संभावनाएं हमारी बहनों के लिए।

0: कम पढ़ी लिखी है या ज्यादा पढ़ी लिखी काम कर सकती है।
1: और देखो ना बिंदु, अब तो सरकार भी इसके लिए महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग दे रही है, गाइड बनने के लिए कोर्स भी करवा रही है और बहुत ही कम ब्याज पर आसान लोन भी दे रही है। बिंदु, आज हमारी जो भी बहनें हमें सुन रही है उनसे मैं यही कहूंगी कि अपने अंदर के हुनर को पहचानिए और एक कदम आगे बढ़ाइए, सफलता आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ी है।
0: बिल्कुल, बातों का यह मीठा सिलसिला तो हम आगे भी जारी रहेगा, पर कुछ नई चर्चाएं जो है हम और भी सुनाएंगे और अभी चलते हैं एक सुरीले गीत की ओर।
1: बिल्कुल।

0: रिश्तों की धूप छाप में वो बनकर साया चलती है। घर के हर एक वजन को वो हंस कर सहती है। मत ढूंढो नारी की संवेदनशीलता का पैमाना, वो तो खुशबू है जो पूरे परिवार में बहती है। जी हाँ बहनों, परिवार सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम नहीं है। परिवार नाम वो है जो एक दूसरे के सुख दुख को महसूस करने का, बिना कहे मन की बात को पढ़ लेने का। और भगवान ने ये अनमोल खूबी, ये संवेदनशीलता हमारे घर की महिलाओं को तो तोहफे में दी है। चाहे वो बच्चे की जिद संभालना हो, बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना हो, या फिर आपसे मन मुटाव को अपनी मीठी मीठी बोलने से पल भर में दूर करना हो। एक स्त्री अपने पूरे जीवन को मोम की तरह पिघलाकर पूरे घर को उजाला देती है और सबको एक सूत्र में बांधे रखती है। और बोलो, आज की हमारी वार्ता भी इस बहुत खूबसूरत एहसास पर आधारित है। वार्ता है परिवारों को जोड़ने में नारी की संवेदनशीलता। वार्ताकार है श्रीमती सोना चिमाई।
1: भारतीय परिवेश में नारी की महत्ता सर्वाधिक पूजनीय श्रद्धा भाव से सुशोभित रही है। नारी के बिना नर का कोई महत्व नहीं है। नारी को तीन देवियों के रूप में सर्वत्र पूजा जाता है। ये देवियां हैं सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। जिस देश में विद्या एवं ज्ञान की उपासना होती है वहां सरस्वती का निवास है। और जहाँ धन संपन्नता वाणिज्य व्यवसाय अत्यधिक मात्रा में है वहाँ लक्ष्मी का निवास है। तथा जहाँ असंतोष युद्ध की भावना एवं उथल पुथल उठती रहती है वहाँ दुर्गा का आधिपत्य है। वैसे तीनों देवियाँ वरदायिनी एवं श्रद्धामयी तथा दयामयी है। कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हिंदुस्तान गांवों का देश है। गांवों में संयुक्त परिवारों की सुरक्षा एवं संभाल रखने वाली घर की सबसे बड़ी महिला ही होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि नारी में संवेदनशीलता के गुण मौजूद रहते हैं। वह ममतामयी दयामयी करुण भाव से युक्त सहनशीलता वाली होती है। संवेदनशील नारी घर की रक्षा करने वाली होती है। वह सुख दुख में समान भाव से रहती है। जैसा कि गीता में लिखा गया है समस्वी सुख दुखी सु, यानी सुख दुख में समान रहकर गृहस्थ की गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता संचालित करती रहती है। वस्तुतः वह सौम्य मूर्ति की तरह होती है। वह अर्धांगिनी होती है। पुरुष में पुरुष के बल पर अहम या तंब रहता है, परंतु नारी पुरुष के अहम को डालने में चतुर होती है। यद्यपि काव्य शास्त्रों में नायक नायिका वेद में नारी के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, तो भी सद्गृहस्थी नारी अपने पतिव्रत धर्म को निभाने में कई कसर नहीं छोड़ती है। कहा जाता है कि अभाव में सभा बिगड़ जाता है, परंतु समझदार नारी अभाव के थप्पड़ों को सहन करती हुई भी चेहरे पर हंसी मुस्कान की रखती है, घर में बोझ को वहन करती रहती है। देश के सुप्रसिद्ध विदुषी नारियों में लोपा

बाबा, गार्गी, विदुला, जिज्जाबाई आदि के नाम सर्वथा उल्लेखनीय रहे हैं। हमें ऐसी विदुषी नारियों से सतत प्रेरणा ग्रहण करते हुए रहना चाहिए। एक समय था कि कवि ने लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। परंतु अब सामाजिक बदलाव में नारी में भी सशक्तिकरण का दौर आ गया है। नारी ने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, वह भी सुशिक्षित होकर घर को चलाने में आर्थिक मददगार हो गई है। नारी भी उच्च पदों पर आसीन होकर अच्छे से अच्छे कार्य को करने में सक्षम हो चुकी है। अपने संयुक्त परिवार को पालने में भी मजबूत श्रृंखला का काम करती है तथा घर के पुरुषों और महिलाओं की रुझान के प्रति सजग रहती है। नारी की महत्ता के बारे में कामायनी महाकाव्य के लेखक कविंद्र जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, नारी तुम केवल सरदा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पुरुष स्रोत से बहा करो। जीवन के सुंदर समतल में नारी को महिमा मंडित श्रद्धा एवं ममता की मूर्ति तथा संवेदनशीलता की परिचायिका भी बताया गया है। इसी प्रकार एक प्रसिद्ध उद्योगपति ने अपने परिवार के लिए हृदय के भावों की अभिव्यक्ति दी है, घर है तुम्हारा तीर्थ सब तीर्थों से बढ़कर, दुनिया का कोई तीर्थ इसके नहीं है बराबर, देवी नहीं है कोई माँ के मुकाबले पर, अवतार ईश्वर का अपने पिता को समझो, सेवा करो पिता की, चरणों में सिर झुकाकर घर दिया जलाकर मंदिर में तुम जलाना, मंदिर घर को मंदिर के सम्मान समझना, माता पिता की सेवा करना, बहनों से स्नेह रखना तथा घर की हर महिला सदस्य का सम्मान करने की प्रवृत्ति में सबसे बड़ा सहयोग नारी का ही रहता है। नारी बड़े परिवारों की धुरी होती है, घर के बाल बच्चों में सुंदर संस्कार उत्पन्न करती है तथा लाड प्यार स्नेह आदि से उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। भारतीय नारी की महत्ता के बारे में कवियों, लेखकों और चिंतकों एवं विचारकों ने अपने आलेखों, विचार गोष्ठियों के माध्यम से उनकी सहिष्णुता, संवेदनशीलता, कोमल भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए उसकी महिमा को मंडित किया है। माँ के अभाव में घर सुन्ना सुन्ना सा लगता है और माँ की उपस्थिति में घर में चार चांद लग जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने उपेक्षित नारियों को अपने कारण में पात्र बनाकर उनके पूज्य भाव का या श्रद्धा भाव बखूबी अभिव्यक्त करते हुए लिखा है, मानस मन में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी यह वीरा में बनी आरती आप। नारी अपने परिवार के प्रति सहज भावना, संवेदनशीलता एवं सहिष्णुता के वशीभूत होकर स्वयं को समर्पित कर देती है। नारी का यह ममत्व त्याग असीम है, अनंत है। देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके उज्ज्वलतम भविष्य को बनाने में नारी का ही हाथ रहा है। नारी देवी है, नारी गृहलक्ष्मी है। कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, अर्थात समस्त प्राणियों में शांति स्वरूपा स्थित नारी या देवी ही है। वर्तमान में यह देखा जाता है कि नारी विभिन्न क्षेत्रों में साहसी, कुशलता एवं दक्षतापूर्ण कार्य करती हुई बहुत ही उपलब्धियां अर्जित करती हैं। इसके पीछे भी नारी का ही संबल काम करता है। संयुक्त परिवार में सभी सुखी रहते हैं। बड़े परिवार के एक बुजुर्ग से पूछा गया कि आपके परिवार की क्या विशेषता है, तो उसने जवाब दिया कि मर्यादा और सहिष्णुता। प्रसिद्ध गांधीवादी साहित्यकार जैनेन्द्र जी ने भी यह विचार व्यक्त किए हैं कि परिवार मर्यादाओं से ही बनता है, परस्पर कर्तव्य होते हैं, अनुशासन होता है। उस नियम परंपरा में कुछ जनों की इकाइयां एक हित के आसपास जुटकर व्यूह में चलती हैं। किसी ने ठीक ही लिखा है, मेहनत रंग लाती है सपनों को सच बनाने में।

0: हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी को बनाने में, और जिंदगी कम पड़ जाती है अपनों को पाने में। पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में मनुष्य पड़ता है, वहाँ परिवार रिश्ते नातों में टूटन आ जाती है, किंतु आध्यात्मिक देश भारत में परिवार के सभी सदस्यों में परस्पर प्रेम रहता है तथा वे एक दूसरे के पूरक रहते हैं। जिन परिवारों में नारी की महत्ता और उसकी संवेदनशीलता को सभी सदस्य समझ जाते हैं, वह परिवार आदर्श परिवार बन जाता है। नारी की सहनशीलता, सहजता, ममत्व की भावना एवं संवेदनशीलता ही परिवार को श्रृंखलाबद्ध जोड़े रखती है। आज भी ऐसे आदर्श परिवार भारतीय समाज में मौजूद है।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था परिवारों को जोड़ने नारी की संवेदनशीलता, वार्ताकार थी सुनील चौहान, और अब समय है

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: मास मतलब इस महीने में लोग व्रत दान तीर्थ यात्रा करते हैं और हम भी इसे अछूते नहीं है, कुछ न कुछ हम भी करते ही रहते हैं।
1: अच्छा बिंदु, ये बताओ कि ये करते हैं आप क्या, जरा मुझे बताओ तो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लू।
0: अरे गंगा में हाथ क्या धोना भाई, पूरा स्नान करो, जी भर के करो, पूरे महीने व्रत करो, कर सकते हैं सब चीज, दान पुण्य कर सकते हैं, हर कोई चीज है ना, घर में भोजन बनाकर भी हम खिला सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं।
1: लेकिन बिंदु वो तो सब ठीक है, पर व्रत करके भूखा रहना और घर संभालना तो देखो मुश्किल ही है ना।
0: ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि व्रत करके आप भूखे रहो यार।
1: अरे भाई आप व्रत कीजिए, लेकिन मीठे में आप आलू का हलवा व्रत करके खा सकते हैं और आटे में उबाल गूंथ कर आलू उबाल कर उसमें मिलाकर पूरी बनाकर या चिप्स ले सकते हैं, बहुत कुछ खाने के लिए।
0: पर बिंदु मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चाहती हूँ कि वे फटाफट बन जाए ताकि दूसरे लोगों का वो जो खाना है वो भी समय पर पूरा कर पाऊँ।
1: अच्छा स्मार्ट वर्क चाहती है।
0: सही है,
1: तो सुनो रात को साबुदाना भिगो कर रखो और आप आलू काट कर टमाटर हरी मिर्ची धनिया डालकर उसको चौंक लगा दीजिए और उसके बाद में आप उठाकर तुरंत अपने दोस्त से काम लग जाए और वही आलू की सब्जी आप सबके लिए बना दीजिए।
0: वही सही बात है बिंदु, जब से आई हो ना बच्चों जैसी आज आलू आलू ही कर रही हूँ, मुझे तो एलकेजी यूकेजी वाली कविता याद आ गई भी कि आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, टोकरी में सो रहे थे।
1: भाई सपना आलू ही तो ऐसा है जो हर जगह हर समय उपलब्ध हो जाता है, बगली मूली सब आराम से खा लेते हैं, 10 तरह से इसे बनाया जा सकता है। ज्यादा है तो आप अन्य व्यंजन भी बना सकते हैं, घर में अगर ज्यादा एक्स्ट्रा आलू पड़े तो अन्य व्यंजन बना सकते हैं, आलू की सूखी सब्जी, टमाटर आलू, ग्रीन आलू, आलू पालक, आलू टमाटर बना सकते हैं, आलू के साथ गोभी और फ्राई आलू भी बना सकते हैं ना, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो मसाले वाली और बिना मसाले आलू से ही बनती है ना। तो
0: आपके बच्चे हैं तो उनको उबाल कर भी दे सकते हैं ना।
1: बिल्कुल, और आलू आलू मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस और खाद्य सुरक्षा और पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण दिन। हर साल 30 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण
0: के विषय मिटाने
1: टिकाऊ भी है और कृषि में आलू के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और FAO द्वारा घोषित किया गया यह दिन है, इसलिए मैं ये आलू आलू बार बार बार बार बार बार बार।
0: और ना बिंदु ये 150 से अधिक देशों में 2 अरब से अधिक लोगों का मुख्य भोजन है।
1: यह हर जगह सस्ता और आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है और इसे घर की टोकरी में कई दिनों तक अन्य सब्जियों की तुलना में रख सकते हैं।
0: और पता है बिंदु ये सस्ता पोषण हमें विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर का एक बेहतरीन और किफायती स्रोत के रूप में उपलब्ध भी है
1: और इसे आसानी से उगाया भी जा सकता है। प्रमुख अनाज जैसे चावल गेहूं है उनकी तुलना में इसमें पानी भी कम चाहिए और कार्बन जो है उसके पदचिन्ह भी कम है, अर्थात ये पर्यावरण का हितैषी भी है और छोटे किसान जो है ना इसे बहुत
0: बहुत बड़ा साधन भी मानते हैं। बिंदु गोवा के समुद्र से लेकर पर्यटन की दुनिया और फिर आलू के इस चटपटे सफर तक तो हम दोनों ने खूब वाकई में मजेदार बातें की, तो बिंदु अब शब्दों के इस सफर को यहीं पर विराम देते हैं और मूड को थोड़ा और सुरीला और थिरकने वाला बनाते हैं इस गीत की तरह।

देखिए समय का पहिया न रुका है न रुकेगा, और नहीं रुका है तो अब समय होता है विदा लेने का। तो आप आगे दीजिए आपकी अपनी रेडियो सखी बिंदु शर्मा और सपना व्यास को नमस्कार।

0: Met Department said that northeastern states and coastal Karnataka are likely to experience thunderstorm accompanied with lightning. Heatwave conditions are likely to prevail over West Madhya Pradesh and Telangana. On to sports. In badminton, India's mixed doubles pair of Dhruv Kapila and Kanisha Krastev are taking on Japan's Sayaka Hobara and Yuichi Shimogami in the semi-finals of the Singapore Open Super 750 tournament today. The Indian pair secured their semi-final berth after defeating Malaysia's Chen Thang Ri and Po Ey in the quarter-finals yesterday. Meanwhile, India's men's doubles duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will also be in semi-final action. In women's cricket, India to take on hosts England in the second T20 international in Bristol today, with the visitors aiming to seal the three-match series. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. India currently lead the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. And in cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in Qualifier 2 at New Chandigarh last night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international of 3-match series in Bristol today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउंग लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की टी20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
4: मैटर ऑफ वे

0: ऑफ आर्मी, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन नाउलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओ मिन नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
3: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू

किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

0: पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया, जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चल बनकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर

0: 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्र ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिनाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सुपर चैनल की हॉट्स पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलमार चैनल है। इस समय दिन के 2:30 हुए हैं। ये आप सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

चाहे मारू थे या बाबा यारा, मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली।

0: अब चाहे लग जाए घड़िया मैं तेरी बाह पकड़ ली, मन खुद नियत कर ली,
1: मैंने हक कर मानी।

प्यार भर कोई तोहमत ना।

रहे रब रूहे या दुनिया में तेरी बाह पकड़ ली मैंने खुद पे नियत कर ली यारी छूटे ना चाहे सर छूटे या माथा चाहे लग जाए हथकड़िया चाहे रब रूठे या दुनिया अपन मारे थे या बाबा या गम मैंने तो कर ली छूटे या माथा मैंने

0: Akashwadi at 90.
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं फिल्म रोटी कपड़े और मकान का ये गीत आवाज लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की है।

रेडियो शो साथियों की फिल्म का नाम था लाड़ी। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में अगला गीत। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा।

मंगेशकर और मुकेश के नए संगीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के बीएमआर चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारे आज के प्रसारण अभी ही संपन्न होते हैं। संध्या 5 बजे आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक की आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। संध्या के 5 बजने वाले हैं। हमारे आज के प्रसारणों की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा के आरंभ में हिंदी में समाचार सुनिए।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाना है। श्री DK कुमार शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। महीने भर चलने वाली ये प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेग्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय संचालन समिति NSC ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण निवेश योजना SIPO को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये मंजूरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित तीसरी NSC बैठक के दौरान दी गई। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी को जापान की साइका होबारा और युइची सिमोगामी ने हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीटिंग रूम 215।

105.5 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमरु चैनल है। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना युववाणी कार्यक्रम।

0: नमस्कार दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद।
1: और मैं हूं शारदा। दोस्तों, आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जिसे हम अक्सर कल पर डाल देते हैं, और वो है हमारा भोजन, हमारी थाली और हमारी सेहत।
0: सही कहा शारदा, युवाओं के लिए संतुलित आहार का मतलब आजकल शायद ये हो गया है कि एक हाथ में पिज्जा और दूसरे हाथ में बर्गर, ताकि बैलेंस बराबर बना रहे। क्यों शारदा?
1: आनंदी, बैलेंस नहीं है ये, तो सेहत के साथ खिलवाड़ है। देखो, हम जिस उम्र में हैं वहाँ जोश बहुत है, लेकिन उस जोश को बनाए रखने के लिए सही ईंधन यानी संतुलित आहार की जरूरत है।
0: अच्छा शारदा, जरा हमारे सुनने वालों को ये तो समझाओ कि ये संतुलित आहार आखिर क्या बना है? क्या सिर्फ ये उबली हुई घास फूस का नाम है?
1: घास फूस बिल्कुल नहीं। देखो आनंद, हमारे शरीर को चलाने के लिए 5 मुख्य तत्वों की जरूरत होती है।
0: अच्छा।
1: पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे ऊर्जा मिले। दूसरा है प्रोटीन, जो हमारी मांसपेशियों की मरम्मत करे। तीसरा है वसा, जो मस्तिष्क के लिए जरूरी है। चौथा है विटामिन और खनिज, जो बीमारियों से लड़ने की ढाल है। और पांचवा है जल, जो जीवन का आधार है। इन सब का सही मात्रा में होना ही संतुलित आहार है।
0: इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं सिर्फ जीवन भर दाल चावल खाऊं तो वो काफी नहीं है?
1: काफी है, बेशर्ते उसमें एक कटोरी सब्जी, थोड़ा सलाद और एक गिलास छाछ भी हो। विविधता ही असली कुंजी है।
0: पर शारदा, समस्या तो स्वाद की है ना। अब माँ घर पर टिंडे की सब्जी बनाए तो मन विद्रोह हो ही जाता है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में बाहर का खाना दिल को सुकून देता है, पुकारता है।
1: आनंद, वो सुकून नहीं, वो तो सिर्फ जीभ का चस्का है। क्या तुम्हें पता है कि बाहर के खाने में मौजूद ट्रांस फैट्स और अत्यधिक नमक हमारे शरीर में आलस्य और चिड़चिड़ापन पैदा करता है? फिर तुम कहते हो कि यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा।
0: अरे, तो क्या मेरा गणित में फेल हो जाना उस समोसे की गलती थी?
1: पूरी तरह तो नहीं, पर हाँ, भारी और अस्वस्थ भोजन दिमाग को सुस्त जरूर बना देता है।
0: हाँ।
1: अगर तुम फल और सूखे मेवे खाओगे तो शायद फॉर्मूले जल्दी याद होंगे।
0: चलिए भाई, हंसी मजाक अपनी जगह पर, हमारे युवा साथी जो हॉस्टल्स में रहते हैं या पीजी में रहते हैं, उनके लिए संतुलित आहार अपने आप में बड़ी चुनौती है। वो तो बेचारे टिफिन पर आश्रित है एक तरीके से।
1: बिल्कुल।
0: उनके लिए कोई सुझाव?
1: बिल्कुल है ना दोस्तों, छोटा बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। पहली बात कि नाश्ता कभी ना छोड़े। कॉलेज की जल्दी में अक्सर हम नाश्ता छोड़ देते हैं। एक फल या मिट्टी भर भीगे चने ही खा लो, पर खाली पेट ना निकलो। दूसरी बात कि रंगों को चुने। अपनी थाली में कम से कम 3 रंग रखने की कोशिश करें, जैसे सफेद चावल या रोटी, पीली दाल और हरी सब्जी। तीसरी बात कि पानी की बोतल हमेशा साथ रखें।
0: बिल्कुल।
1: अक्सर हमें प्यास लगी होती है और हम भूख समझकर चिप्स खा लेते हैं। और चौथी बात कि चीनी से दूरी बनाएं। कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय नींबू पानी या नारियल पानी का चुनाव करें।
0: वाह, मतलब ये रास्ता जो है वो आपके लिए बहुत सस्ता भी है और स्वास्थ्य वर्धक भी है। तो दोस्तों, बिल्कुल आप संतुलित आहार जरूर लीजिए।
1: सही का। तो चलिए, आज से शपथ लेते हैं कि प्लेट में स्वाद के साथ साथ सेहत को भी पूरी जगह देंगे।
0: बिल्कुल, और सही कहा तुमने। तो इस शपथ के साथ ही आज मैं देख रहा हूँ कि आज हमारा बीकानेर का जो मौसम है बहुत खुशनुमा हुआ। कई दिनों बाद नौतपा की इस गर्मी के बाद में थोड़ी सी जो हवा चली है, इस हवा ने सुकून जरूर दिया है। तो चलिए आइए चलते हैं आगे।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है हमारे एक खास सेगमेंट का जो कि है क्विज सेगमेंट, जिसमें हम आपसे पूछते हैं दो रोचक सवाल। तो बिना देर किए जानते हैं आज का पहला सवाल।
1: तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है?
0: और दोस्तों आज का दूसरा सवाल है, निशान मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है?
1: तो दोस्तों ये थे हमारे दो सवाल और जिनके जवाब मिलेंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। तो जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम युववाणी से।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
6: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे, आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: एक जमाने से कहा

0: फैशन भी स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड बेस ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: शारदा, गर्मियों की छुट्टियां चल रही है और बच्चों के चेहरों पर रौनक है, साथ ही साथ में आज है 30 मई, और ये 30 मई का जो दिनांक है वो एक और बात हमारे मन में लेकर आती है। हमारे मन में समुद्र की लहरें, फैनी की खुशबू और फुटबॉल के किक की आवाज सुनाई देती है।
3: अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम गोवा की बात कर रहे हो? आज गोवा राज्य स्थापना दिवस है ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा। आज ही के दिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और वह भारत का 25वां राज्य बना था।
3: आज गोवा का नाम सुनते ही हमारे युवाओं के मन में तो बस वेकेशंस, बीच और पार्टी के विचार आते हैं, पर क्या तुम्हें पता है कि गोवा का इतिहास कितना संघर्षपूर्ण रहा है?
2: हाँ शारदा, ये वाकई दिलचस्प है। जहाँ पूरा भारत 1947 में आजाद हो गया था, वहीं गोवा को पुर्तगालियों के चंगुल से छूटने में 14 साल और लग गए। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के जरिए हमारा गोवा आजाद हुआ था।
3: बिल्कुल सही, और आजादी के बाद भी इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य की पहचान मिली, इसीलिए आज का दिन हर गोवन और हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है।
2: वैसे शारदा, गोवा सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खाना भी लाजवाब है। और जिस संतुलित आहार की हम अभी बात कर रहे थे ना, तो गोवा के खाने को भी हम संतुलित आहार कह सकते हैं। क्यों
3: क्यों नहीं, गोवा का पारंपरिक भोजन जैसे फिश करी और चावल, जिसे वहाँ शीत कड़ी कहते हैं, पोषण से भरपूर होते हैं। वहाँ के लोग नारियल और ताजा मसालों का खूब इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं।
2: और वहाँ का संगीत मंडो और देखनी, जैसे लोग संगीत सुनते ही पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। पर शारदा, युवाओं के लिए गोवा से सीखने वाली सबसे बड़ी बात पता है क्या है?
3: क्या है? मैं बताती हूँ आनंद। वहाँ का सुसेगाद कल्चर, सुसेगाद का मतलब है शांति और सुकून से जीवन जीना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम युवा स्ट्रेस में रहते हैं। गोवा हमें सिखाता है कि काम के साथ साथ प्रकृति का आनंद लेना और मानसिक शांति बनाए रखना कितना जरूरी है।
2: वाह, तो दोस्तों आज संकल्प ले कि हम भी अपनी जड़ों और संस्कृति का सम्मान करेंगे, जैसे गोवा के लोग करते हैं, चाहे वह वहाँ की कोंकणी भाषा हो या वहाँ के खूबसूरत चर्च और मंदिर।
3: बिल्कुल, और हाँ, अगर अगली बार

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत मतगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: मतगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी उपस्थिति इतनी सामान्य हो जाती है कि हम उनके महत्व पर ध्यान ही नहीं देते। और आलू भी ऐसी ही एक फसल है। लगभग हर रसोई में उपयोग होने वाला आलू केवल एक सब्जी नहीं है बल्कि विश्व खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यही कारण है कि हर वर्ष 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है।
5: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य केवल आलू के स्वाद या लोकप्रियता को बताना नहीं है बल्कि ये समझाना भी है कि यह फसल दुनिया भर में करोड़ों लोगों के जीवन और पोषण से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आलू आज दुनिया की सबसे अधिक उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्य फसलों में शामिल है।
4: बिल्कुल, और इतिहास की बात करें तो आलू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्रों में मानी जाती है। वहां के लोग हजारों वर्षों से इसकी खेती करती आ रहे थे। बाद में यूरोपीय देशों ने के माध्यम से यह दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा और धीरे धीरे हर देश की खाद्य संस्कृति का हिस्सा बन गया।
5: दोस्तों, भारत में भी आलू का विशेष स्थान है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक लगभग हर क्षेत्र में व्यंजनों में इसका उपयोग होता है। चाहे आलू का पराठा हो, दम आलू हो, समोसा हो, टिक्की हो या फिर साधारण आलू की सब्जी, ये हर रूप में लोगों की पसंद बना हुआ है।
4: बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी है। आलू स्वयं को हर स्वाद और हर मसाले के अनुसार ढाल लेता है और शायद इसी कारण लोग इसे हर सब्जी का साथी भी कहते हैं।
5: और ये हर सब्जी का साथी होने के साथ साथ शायद पोषण की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन सी है, पोटेशियम और फाइबर तक पाए जाते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करते हैं।
4: बिल्कुल,
5: विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां लोगों के पास सीमित संसाधन होते हैं, कम संसाधन होते हैं, और आलू सस्ते और पौष्टिक भोजन का एक अच्छा विकल्प उन स्थानों पर बन जाता है।
4: सही कहा। इतिहास में कई ऐसे समय आए हैं जब खाद्य संकट के दौरान आलू ने लाखों लोगों को भूख से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि इसकी खेती अपेक्षाकृत आसान होती है और कम भूमि में भी अच्छी पैदावार मिल जाती है।
5: और दोस्तों, आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या और बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच आलू भविष्य के खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है और यही कारण है कि दुनिया भर में इसके उत्पादन और गुणवत्ता पर लगातार शोध हो रहे हैं।
4: तो फिर आनंद, ये कहना गलत नहीं होगा कि आलू केवल भोजन का हिस्सा नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और विज्ञान तीनों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण फसल है।
5: बिल्कुल, और शायद इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस हमें ये याद दिलाता है कि कभी कभी साधारण दिखने वाली चीजें भी मानव जीवन में असाधारण महत्व रखती है।

साल और एक फानी सफर आकाशवाणी जिसमें संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक।

अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है

हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: दोस्तों अभी हम जैसे घूमने फिरने की बात कर रहे थे, तो क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी जगह है जहां बादल आसमान में नहीं बल्कि आपके कदमों में तैरते हैं। जी हां, हमारे आज हम ऐसी एक जगह के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसी ही खूबसूरत जगह है मेघालय में, जिसे हम चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोग इस जगह को सोहरा भी कहते हैं।
1: सोहरा कितना सुंदर नाम है ना। वैसे आनंद, चेरापूंजी तो पूरी दुनिया में अपने रिकॉर्ड तोड़ बारिश के लिए जाना जाता है ना।
0: बिल्कुल शारदा, समुद्र तल से करीब 1480 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस शहर के नाम एक साल और एक महीने में सबसे ज्यादा बारिश होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। ये सचमुच बादलों का अपना घर है।
1: बादलों का घर यानी बारिश प्रेमियों के लिए तो ये जन्नत है, लेकिन आनंद, हर वक्त छाता हाथ में रखने के अलावा यहाँ पर्यटकों के देखने के लिए और क्या क्या है?
0: अरे शारदा, यहाँ के नजारे होश उड़ा देने वाले हैं।
1: वाह क्या बात।
0: सबसे पहले नोकलिकाई जलप्रपात, जो कि करीब 340 मीटर की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता है और ये भारत का सबसे ऊंचा सिंगल ड्रॉप यानी सीधे नीचे गिरने वाला झरना है।
1: बाप रे, 340 मीटर, यह तो बहुत ही विशाल हुआ। और आनंद, मैंने सुना है यहाँ पेड़ों की जड़ों से बने कुछ अनोखे पुल भी हैं।
0: तुमने बिल्कुल सही सुना है, उन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं हम। जैसे कि यहाँ की स्थानीय खासी जनजाति के लोग रबर के पेड़ों की जीवित जड़ों को नदी के पार बढ़ने का

0: आस्था दिखाते हैं। ये प्राकृतिक पुल समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं और एक बार में 50 से ज्यादा लोगों का वजन संभाल सकते हैं। तुम समझ सकते हो कि किस प्रकार से हमारी प्रकृति जो है वो हमें संभालती है। और ये प्रकृति अपने आप में ऐसी एक प्रक्रिया है जिससे पूरा जीवन संभव हो पाता है।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसी ही प्रक्रिया है एक प्रकाश संश्लेषण।
1: बिल्कुल सही। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो कि नहीं जानते कि पेड़ पौधे हमारे धरती पे जीवन का संतुलन बनाए रखने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं।
0: दोस्तों प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया के दौरान वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए बेहद आवश्यक है।
1: दोस्तों अगर इसे इजी लैंग्वेज में समझें तो पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। ये काम उनकी पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल नामक हरे रंग के पदार्थ की मदद से होता है। यही क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का ग्रहण करता है और भोजन बनाने की प्रक्रिया को संभव बनाता है।
0: वास्तव में पृथ्वी पर रहने वाला लगभग हर जीव किसी न किसी रूप में प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर है। भोजन श्रृंखला की शुरुआत पौधों से होती है। शाकाहारी जीव पौधों को खाते हैं और मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह पूरा पारिस्थितिकी तंत्र इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण पर्यावरण को संतुलित रखने में भी मदद करता है। पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इससे वायु को स्वच्छ बनाए रखने में सहायता मिलती है और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी कम करने में मदद मिलती है।
0: बहुत सही कहा तुमने। और आज के समय में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण पेड़ों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसका असर पर्यावरण और जलवायु दोनों पर दिखाई दे रहा है। इसलिए वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ अधिक से अधिक पेड़ लगाने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि ये प्रकृति हमारी है, इन पेड़ पौधों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, और अगर हम चाहते हैं इस पर्यावरण में घूमना, इस प्राकृतिक स्थलों को देखना, तो निश्चित रूप से हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी ही चाहिए। चलिए चलते हैं आगे एक खुशनुमा गीत की ओर।

0: दोस्तों अब समय है उस सेगमेंट का जिसका हमारे युवा साथी बेसब्री से इंतजार करते हैं, यानी कि रोजगार सूचना की।
1: तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग में CDS के 451 और NDA के 394 पदों के लिए आवेदन चालू है। इसके लिए आयु सीमा 18 से 24 वर्ष रखी गई है। आप इसका आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जून 2026 रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: इसके साथ ही SSC CGL की नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। कुल पद है 12,256। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन बम्पर भर्ती आई है और शैक्षणिक योग्यता रखी गई है स्नातक पास। आवेदन करने के लिए आपको ssc.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 22 जून 2026 है, तो बिल्कुल देरी मत कीजिए और जल्दी से आप आवेदन कीजिए। इसके साथ ही शारदा, हम एक बात कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं।
1: क्या है?
0: हमने हमारे दोस्तों से कुछ सवाल पूछे थे और हमारे दोस्तों ने निश्चित रूप से उन सवालों के जवाब अपनी डायरी में नोट भी कर लिए होंगे। तो आइए अब वक्त है कि वो उन जवाबों को सही से मिलान कर ले। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न था कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो इसका सही उत्तर है
1: संजय मल्होत्रा। और दोस्तों आज का दूसरा सवाल था, मिसाल मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? तो इसका जवाब है इसरो और नासा।
0: जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे दो सवाल और उनके सही उत्तर। निश्चित रूप से आपने सही उत्तर ढूंढ लिए होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा ये कार्यक्रम कितना ज्यादा मीनिंगफुल रहा है। हमने आज बात की है संतुलित आहार की। जी हाँ, वही संतुलित आहार जिसे हम प्राय प्राय भूल जाते हैं और बस कुछ भी खाने को लेकर चल देते हैं। साथ ही साथ हमने हमारी जानकारी में बढ़ोतरी करते हुए गोवा राज्य के स्थापना दिवस के बारे में जाना। और यही तो हमारे विविधता में एकता वाले देश की खासियत है कि हर राज्य जिसकी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग खुशबू है, हम उसे महसूस करते हैं। साथ ही साथ हमने हमारी डेली रूटीन की चीज यानी आलू दिवस भर भी बात की। और तो और हमने चेरा पूंजी की यात्रा भी अपने शब्दों के माध्यम से की और जाना प्रकाश संश्लेषण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो दोस्तों ये था हमारा युवाणी कार्यक्रम। मैं आनंद कुमार पुरोहित
1: और मैं शारदा नैन। नमस्कार।

रात 9:30 पर युवा भारती कार्यक्रम और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से

अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 7 बजे। और आज के इस कार्यक्रम में आपको प्रतीक्षा होती है आप सभी श्रोताओं के अपने पत्रों व ईमेल पर आधारित लोक गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम गूंजे गांव ग्वार के। तो आज इस कार्यक्रम में सुनेगा अपने पसंद के लोकगीत।

साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण हमारे केंद्र से प्रसारित होगा रात 8 बजे। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसकी 146वीं कड़ी। वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय के होंगे, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा की है और इसके संयोजन है श्री अमित सिंह का।

फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 6:05 पर। और आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे शीर्षक संगीत। अलावा इसके फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 9:30 पर।

को एक बार फिर से याद दिलवा दें, रात 9:30 पर युवा भारती कार्यक्रम और रात्रि 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमरु चैनल है। संध्या के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें हैं जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत

0: This is a
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल

चैनल है। संध्या के 6:05 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। श्रोतों, आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शीर्षक संगीत, और आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक है आंखें।

0: फिल्म भी स्टाइल गया है पर्पल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आप

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: फिल्म संगीत के शीर्षक संगीत कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए आंखें शीर्षक से धर्मपुत्र फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज में।

फिल्म का ये गीत कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना मुखर्जी की आवाजों में। आप सुन रहे हैं आंखें शीर्षक फिल्मी गीत।

कार्यक्रम संगीत के शीर्षक संगीत कार्यक्रम के आखिर में सुनिए कसम तेरी कसम फिल्म का ये गीत। अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास की आवाजों में।

दासोदास की आवाजों में गाए फिल्म कसम तेरी कसम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामाई चैनल है। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले के चिट्ठियों तक पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आमजन के बीच की कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूसरे दिन भी धूल भरी आंधी का दौर जारी, सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार।

से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। वे आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जनरल द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, यह अभियान अब भी जारी है। जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान को खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ने वाला एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाना जाना चाहिए। श्री चौहान आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। केंद्रीय मंत्री ने अभियान के तहत पंचायत स्तर पर मशीनों के वितरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून तक देश भर में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों के साथ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और पारदर्शी तरीके से ही कराए जाते हैं। व्यास नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। PM स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1 जून से जयपुर में शिविर लगाए जाएंगे। 3 दिन चलने वाले इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों को द्वितीय ऋण की किस्त स्वीकृति और वितरित की जाएगी। ये शिविर जयपुर नगर निगम और एक निजी बैंक के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे। इसे स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके व्यवसाय के विस्तार में मदद मिलती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी बताया है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के महाअधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन की सफल

0: स्वच्छता में भी नगर पालिका कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। श्री शर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप वो कड़ी हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी, अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगर पालिकाओं के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में भी सभी की भागीदारी को आवश्यक बताया। महाधिवेशन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के डी रेगुलेशन फेज वन के तहत किए जा रहे सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि राज निवेश पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाकर समयबद्ध निस्तारण के प्रयासों से राजस्थान निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। अप्रैल 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज निवेश पोर्टल पर प्राप्त 9000 आवेदनों में से 6000 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है। आवेदनों को मंजूर करने के मामले में राज्य में जयपुर जिला पहले स्थान पर रहा, जहां लगभग 2000 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1300 से अधिक आवेदन स्वीकृत हुए। पुलिस मुख्यालय ने पुलिसिंग में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 123 पुलिस कार्मिकों को महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल देने की घोषणा की है। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, प्रशासन तथा उत्कृष्ट पुलिस सेवा के लिए चयन समिति की अनुशंसा पर इस वर्ष कुल 123 अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया गया है। इनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण HGR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश, परिश देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सिरोही जिले के एक विश्वविद्यालय में योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, योग साधकों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया तथा योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की शपथ ली। नागौर शहर के पास जोधपुर बीकानेर मार्ग पर आज दोपहर एक कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा डुकोसी और राजुवास गांव के पास हुआ। दुर्घटना में कार में सवार 2 महिलाओं और एक बच्चे सहित 4 की मौत हो गई। सभी मृतक जोधपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रदेश में धूल भरी आंधी का दौर आज भी जारी रहा। सीमावर्ती और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आज दोपहर बाद अचानक आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर जिलों में अचानक बदले मौसम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेतीले अंधड़ की शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र से हुई, जिसके बाद इसका प्रभाव आसपास के जिलों तक फैल गया। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि दोपहर बाद आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
2: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है। दोपहर पहले यहां तेज धूप गर्मी का असर रहा, जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज अंधड़ आया। तेज रफ्तार से हवाएं चली, जिससे लोगों के टिन सेट उड़ गए हैं। तेज अंधड़ से पेड़ पौधे भी काफी टूटकर नीचे गिर गए। गाँव में अच्छी बारिश हुई है, साथ ही चूरू में चने के आकार के ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। वहीं तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: प्रदेश में कई स्थानों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इस दौरान कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली के पोल धराशायी हो गए। राजधानी जयपुर में भी शाम को बादल छाए रहे, बिजली कड़कने के साथ ही धूल भरी आंधी चली और कहीं कहीं बारिश हुई। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होने की सूचना है। पिछले 2 दिनों से जारी आंधी बारिश से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की

गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज करीब 30 जिलों के लिए आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने के आसार जताए हैं। केंद्र ने आंधी और तेज हवाओं, बिजली चमकने के साथ लोगों से सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आंधी बारिश का ये दौर अगले 3-4 दिन जारी रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का पहला चरण पूरा हो गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भवन का नवीनीकरण, प्रवेश और निकास मार्गों का पृथक्करण, नई पार्किंग व्यवस्था, बुकिंग कार्यालय और रिटायरिंग रूम का उन्नयन किया गया है। इस काम में लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत आई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आमजन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूसरे दिन भी धूल भरी आंधी का दौर जारी, सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कप्तान खान कलर ने तैयार किया है। जालौर जिले को बीते महीने महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। वहीं भीषण गर्मी के बीच मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने जिले का दौरा कर आम जन के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों जालौर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिले में रात्रि विश्राम कर चौपाल लगाई। पंचेरी गांव में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद किया और सरकार की योजनाओं का धरातल पर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए आम जन से इनका अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं और लाभार्थियों से संवाद कर उनसे सफलता की कहानियों को सुना। उन्होंने गांव का पैदल भ्रमण कर जायजा लिया और लोगों के साथ चाय पीकर चर्चा की। ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और जीवाराम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जालौर को दिल्ली से सीधा रेल सेवा से जोड़ने की लंबे समय से चली आ रही जिलेवासियों की मांग बीते दिनों पूरी हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में जालौर से होकर गुजरने वाली दिल्ली भुज एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की। उन्होंने जालौर पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस गाड़ी का जिले के रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनमाल, मोदरान और जालौर में ठहराव होगा। रोजाना चलने वाली इस गाड़ी से जालौर वासी अब जयपुर और दिल्ली से सीधे जुड़ेंगे। वहीं गुजरात के भरूच, अंजार और गांधीधाम तक भी सीधी पहुंच हो सकेगी। गाड़ी की शुरुआत होने से आमजन में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जिले में इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गंगा दशमी के अवसर पर 25 मई से शुरू हुए इस अभियान के दौरान आदर्श अमृत सरोवर बागोड़ा पर श्रमदान रखा गया। जिला स्तरीय आयोजन में प्रभारी मंत्री के विश्नोई शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक मजबूत संकल्प है। अभियान के तहत जिले भर में रोजाना श्रमदान और जागरूकता गतिविधियों के साथ जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। हरियालो राजस्थान के तहत जिले में इस सीजन में 19 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। जिला प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने ये जानकारी देते हुए आम जन से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। श्री विश्नोई ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बागोड़ा स्थित खेतलाजी तालाब पर पीपल का पौधा लगाकर

0: पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसी सिलसिले में बीते दिनों आहूर में संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। अभियान में पशुपालन विभाग की ओर से जिले की 308 गौशालाओं में स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। जिले के भेटाला में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के तहत तंबाकू और नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। ग्रामीणों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। जालौर जिले में मतदाताओं द्वारा स्वगणना पोर्टल पर जनगणना जानकारी दर्ज की गई। 1 से 15 मई तक चले स्वगणना अभियान के तहत अब जनगणना कर्मी लोगों के घर घर पहुंचकर सूचना अपडेट कर रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए आवासों की सूची, सुविधाओं, संपत्तियों और अन्य आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने के साथ ही मकान पर नंबर लिखने का काम किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय परिसर में पिछले दिनों एक दिवसीय प्लेसमेंट शिविर आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और रोजगार विभाग की ओर से लगाए गए इस शिविर में 110 बेरोजगारों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया गया। जिले भर में इन दिनों सूरज अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बढ़ते तापमान के साथ गर्मी के तीखे तेवर बने रहने से आमजन के साथ पशु पक्षी भी व्याकुल हो रहे हैं। अधिकतम तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने से दिन के समय बाजार और सार्वजनिक स्थान सूने दिखाई दे रहे हैं। जालौर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार।

खास समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो भारतीय फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावण सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल समारा 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका कर्मचारियां ने सरकार और जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश माय आज दूजा दिन ही धूलो उड़बा सागे आंधी चाली सरहदी हलका माय रेत रात तूफान उस जिंदगी माथे असर पड़ियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि भारत री फौज आला दर्जा री सावचेती राख रही है और जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर शुरू करण बाबत ही तैयार है। वे आज पुणे रा खड़कवासला री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी माय 150वां बैच री पासिंग आउट परेड माय बोल रहा है। ये मौके जनरल द्विवेदी कहो कि ऑपरेशन सिंदूर उकसावा रो जवाब सटीक और पक्का इरादा सागर देवण रा भारत रा बूता रो दर्शाव कीनो है। वह कहो कि वो अभियान हाल ही चाल रियो है। जनरल द्विवेदी पास आउट वेवन वाला कैडेटाओं व्यावसायिकता नेतृत्व और देश सेवा रा आला मानका ने बनाया रखन बाबत कहो। फौज रा मुखिया ई कोर्स ने पास करन वाली महिला कैडेटा री सराहना करता थका कहो कि हिम्मत पक्का इरादा और फौजी बेहतरी बगैर लिंग भेद रो गुण है। अकादमी 353 कैडेट स्नातक री डिग्री हासिल कीनी। इस आगे दोस्ताना रिश्ता वाला देशा रा 21 कैडेटा ने ही डिग्री दी रीजी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेत बचाओ अभियान ने खेता किसाना और गांवा ने जोड़बा रो मोटो अभियान बनावन बाबत कहो है। श्री चौहान आज नई दिल्ली माए खेत बचाओ अभियान री तैयारियां रे बारा माए राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। वह कहो कि इन अभियान रो मकसद खाद ने बुद्धिमानी काम लेवण किसाना ने मौसम जुड़ी जानकारियां और राय टेम सर देवण और न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो गांवा री जनता ताई सीधो पुगावणो है। खेत बचाओ अभियान 1-30 जून ताई आखा देश माए चलायो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए काल समारा 11 बजे विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी है।

0: ला इरो प्रसारण एआईआर न्यूज डीडी न्यूज प्रधानमंत्री रा दफ्तर सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल सागे न्यूज ऑन एआईआर ऐप माथई करियो चावेला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहो है कि देश में चुनाव संविधान चुनावी कानून रे मुजब एर साफ कोई सागे कराया जावे है। वे आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग री नुमाइंदगी करण वाला वकीलों रा दूजा राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहो कि लोकसभा चुनाव रे दौरान साफ गोई जवाबदेही और निपक्ष तरीका वोट देवनो तय करण सारू करीब 1,08,00,000 सरकारी कर्मचारी तैनात करया जावे है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE रो पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून नु काम करण लागेला। विद्यार्थियों री परीक्षा री कॉपियां रा सत्यापन और उजू जंचावण री साफ प्रक्रिया तय करण सारू ओ पोर्टल शुरू करियो जा रहे है। जयपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रा तहत पात्र रेहड़ी पटरी वाला ने कर्ज मुहैया करावण सारू नगर निगम और एक गैर सरकारी बैंक कान्यू मेलर 1 जून खास शिविर लगाया जावेला। 3 दिन रा आ शिविरा में पात्र लोगों ने कर्ज री दूजी किश्त दी जावेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका माए काम करण वाला ने सरकारी योजनावां री जानकारी जनता ताई पुगावण रा काम माए खास कड़ी बताया है। वे आज जयपुर में राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन रा महाधिवेशन में बोल रहा है। मुख्यमंत्री कहो कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन री कामयाबी माई नगरपालिका कर्मचारियों रो खास काम रहो है। श्री शर्मा कहो कि स्वच्छ भारत अभियान देश में साफ सफाई रा काम ने जनता रो आंदोलन बना दिनो है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप वो कड़ी हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई कोई भी कर्मचारी अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगर पालिकाओं के कर्मचारी चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहे।
0: मुख्यमंत्री विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 रो संकल्प सांचो करण माए सगणा री भागीदारी ने जरूरी बताई। कार्यक्रम माए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य रा नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्राई मौजूद रहा। प्रदेश में निवेश सारू राज निवेश पोर्टल माथे मिली 9,000 अर्जियां मायों 6,000 बत्ती मंजूर कर ली रिची है। अर्जियां मंजूर करण रा काम माए जयपुर प्रदेश माए अव्वल रहो, जठे मिली करीब 2,000 अर्जियां मायों 1,300 बत्ती ने मंजूरी दे रिची। मुख्य सचिव वे श्रीनिवास आ जानकारी दीनी। पुलिस मुख्यालय बेहतर काम करण वाला 123 अहलकारां और कर्मचारियों ने महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल ऊन नवाजण रो ऐलान किनो है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा री ओर निकाली जिया हुकम रे मुजब पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक ऊ सिपाही लेवल ताई रा अहलकारां और कर्मचारियों रो मान करियो जावेला। नवाजी जावण वाला अहलकारां माए पुलिस री सिखावण देवण रो काम देख रहा अतिरिक्त महानिदेशक HGR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश, परिस देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह शामिल है। 21 जून ने मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला में प्रदेश में आई नैरी नैरी ठोड़ा योगाभ्यास रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। आज सिरोही जिला रा एक विश्वविद्यालय में योगाभ्यास रो कार्यक्रम रखी जियो। इन माए विद्यार्थी शिक्षक और जनता उमाऊ सागे भाग लीनो और योग ने रोजमर्रा री जिंदगी रो हिस्सो बनावन री सोगन लीनी।

0: नागौर कने जोधपुर बीकानेर गेला माथे आज दोपहरा कार रे ट्रक री फेंट माय आ जावणो चार जणा री मौत वेगी। पुलिस रे मुजब डुकोसी और राजूवास गांवा बीचे व्या हादसा रे कारण कार माय सवार दो महिलावां और एक बच्चा समेत चार जणा री मौत वेगी। अरब मौसम प्रदेश रा पाकिस्तान री सरहदू लागियोड़ा और उत्तराद आतुणी हलका माय आज दोपहरा री पोर जोरदार रेतीलो तूफान आयो। श्रीगंगानगर बीकानेर चूरू हनुमानगढ़ और सीकर जिला में आए जोरदार आंधियों दिन में आई अंधारों महसूस वेमण लाग्यो। रेत रात तूफान री शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलाओं भी जो थोड़ी देर में आई आरे सारे रा मोटा हल्का माय पसर गयो। माणा चूरू खबर नवीस बतायो कि रेत रात तूफान जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो।
1: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है। दोपहर पहले यहां तेज धूप गर्मी का असर रहा जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज अंधड़ आया। तेज रफ्तार से हवाएं चली जिससे लोगों के टिन सेट उड़ गए हैं। तेज अंधड़ से पेड़ पौधे भी काफी टूटकर नीचे गिर गए। गाँव में अच्छी बारिश हुई है, साथ ही चूरू में चने के आकार के ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। वहीं तापमान में थोड़ी आई है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: कई ठोड़ा 60-80 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार हूँ बायरो बाजो जिणो धूलारो गुबार छा जावण रे कारण दूर ताई नजर नी आयो। इन दौरान लोगां ने दिन में ही गाड़ियां री लाइटा चासनी पड़ी। जोरदार बायरो बाजनो कई छोड़ा रूखड़ा टूट गया और होर्डिंग्स उखड़ गया और बिजली री पूर्ति माथे असर पड़ियो। राजधानी जयपुर में आई सिंजानी पोर बादला मंडी गया, धूलो उड़ियो, आंधी चाली और कठे कठे बारिश हुई। आंधी बारिश हूँ पारो 10 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। मौसम केंद्र जयपुर प्रदेश में आज करीब 30 जिला सारू आंधी बारिश सागे कठे कठे ओला पड़बार आसार चताया है। केंद्र आंधी चालन जोरदार बायरो बाजण और बिजली चमकण री बगत सावचेती राखण सारू कहो है। मौसम केंद्र रे मुजब आंधी बारिश रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहवण री संभावना है। श्रीगंगानगर जिला रा सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावण रा काम रो पहलो दौर पूरो फेंक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन बतायो के अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत स्टेशन भवन ने बेहतर बनावण, स्टेशन में दाखिल वेवण और बाहर जावण रा न्यारा न्यारा दरूजा बनावण, गाड़ियां उबी करण री नूवी व्यवस्था विकसित करण समेत कई खास काम करी चिया जा माथे करीब 20 करोड़ रुपया रो खर्चो आयो। इस आगई वठे करीब 10 करोड़ रुपया रा खर्चो 12 मीटर चौड़ो पैदल पुल बनायो जा रियो है और सूरज री रोशनी 50 किलोवाट बिजली पैदा करण री मशीनाई लगाई जा रही है। आखिर माय खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो भारत री फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावण सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल समारा 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका कर्मचारियों ने सरकार और जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश माए आज दूजा दिन धूलो उड़बा सागे आंधी चाली। सरहदी हलका माए रेत रात तूफान जिंदगी माथे असर पड़ियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: बिल्डिंग वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढूंढ मरू चैनल है। संध्या के 7 बज चुके हैं। अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम।

0: पर आज जिके में गुंजे गांव गुआड़ कार्यक्रम डी उड़ीक शुरू बैठल भाई लोगों ने आप रहे तड़े तोड़ा राम रा आर
1: रामु का खरा मोठ कला मोखला राम राम। और आज देखो थोड़ी भाई बात आ है कि थे बात तो बता ही दी कि आज उड़ीक है कि आप संदेश भेजन कोई दायरो गीतड़ होना चाहे कोई अर्जस होने कोई भजन होने किन किन राजस्थानी ओढ़ खान रही कोई भाड़ पर भाईचारे री आपने संस्कृति री एक बदावेरी बात बताओ ये बात होने खातर बड़ा उतावड़ा है। कई तो देखो आज रे जमाने में भी मरकन राता पीला मूंगा हो सी ने कागज बढ़िया है कि अचंभ हुआ कि कागज भी कोई लिखे है कहीं पर देखो आप रे जो की पसंद हुए नीर खातर आदमी कहीं कहीं जतन करे कोई संदेश भेजे कोई कागजिया भेजे कोई ईमेल भेजे कार्यक्रम गुंजे गांव गुआड़ और फूटा गितड़ला हूं तारी ऐसा। और उम्मीद करा कि आप छेकड़ले तो रहता है आप रे नाम ने उड़ी कोला थे कहीं खोलो कि नाम बांचो किरे
0: तुमने तो देखो ईमेल जी का आवे नहीं आजकल वे देखन लाग रही होंगे भाई लोग अपने ईमेल सुन ही आप रे जी का गितड़ला सुनना होवे भी सारू संदेश भेजा करे तो भाई देखो संदेशा आयोड़ा है और गीत सुनने भी तैयार है तो पहले गीतड़लो सुनाओ फिर अपन
1: संदेश जी बात करा रहा गायन और नाम बोला है तो लो सर सुनो कार्यक्रम लो पहले गीत

0: तो चलो भाई वो फूटो गीत गुंजे गांव गाड़ी पहली दाय आरो और जिनकी इन दाय करो बे देखो आप रखने संदेश आउट है न बात चल बताओ देखने कौन हाँ
1: देखो इन्हें सुनो चाहता लक्ष्मणपुर छत्तीसगढ़ सु विश्वनाथ साहू पंकज तिरुपति रेंगनी छत्तीसगढ़ सु दिनेश वर्मा लेबई सु गुलाबदास मणिपुरी और दत्तरंगी सु भागवत वर्मा आर रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब सु जगमाल सिंह डागला हिप्पी जेएस नायक और शोभा नायक और बीकानेर कमला कॉलोनी से इन्हें सुनो चावड़िया हा सुभाष खत्री तरुण खत्री वर्षा और जोय खत्री
0: और चलो भाई गीत में ही दाय करे हो पवनपुरी बीकानेर सु अपने नियमित श्रोता भंवरलाल सोनगरा गीता रानी राज सोनगरा डॉक्टर सोन दायमा सरोज दायमा मूलचंद सोनगरा सुनीता प्रथम राज हंसराज कृष्णा मुकेश सोनगरा सावित्री कशक अंजलि अनुष्का अमिषा जतिन आशीष लक्षिता चंचल सोनगरा इर सागे गांव फ्रांची सुन भाई राजकुमार डूडी सरजीत सिंह डूडी प्रमोद कुमार डूडी और हांसी शहर सुन ही और साथी ऐसा राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष और बजूर डब्बू आगलो गुंजे गांव ग्वाडरो गीतड़लो होना भी पहले लो सा सुनो संदेश
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान

0: गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का।

0: दिल्ली स्टाइल गया है पटल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड बेस ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लीव भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और लिंग, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। गांव की महिलाएं जो खेती में काम करती हैं इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अक्सर उनकी बात सुनी ही नहीं जाती और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आपदा के वक्त जैसे बाढ़ या सूखे में कैंप्स या आश्रय में उनके साथ यौन हिंसा का खतरा भी होता है। लेकिन इन्हीं महिलाओं के पास एक ऐसा ज्ञान भी होता है जो जलवायु संकट से लड़ने में मदद कर सकता है। बस जरूरत है उन्हें योजनाओं और फैसलों में शामिल करने की। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में हर 3 में से लगभग 1 महिला के अपने जीवन काल में शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है।
8: आज की सगड़ी लू चाले नहीं, लू में निनान करती जी की लुगया है। बे देखो अपन जी के गरनार वे बिया सुखी मांग करिया करे कालू नाम प्रजापति आपरे गीतड़ी में बताया
9: बे बरतार के वे कि बे बिल खे के खतर है। हाँ। बोड़ लो उन दे जमन हुई मंडी में धान बेच रहा वहां। हाँ। बाजार भाव देखर।
8: हाँ।
9: और फसल उपचार सगला जगह तरीका है बे रखा ला हम ज थे कोई कालू राम प्रजापति रो
8: गीत कर ले बतायोड़ो है कि किया मांग है
9: बिल खैर है पण इन हुन नो कौन चाहे आप भी बताओ।
8: वाह बता दू। देखो महादेव घाट अमलेश परसों डोमन ठाकुर सुमन मिथिलेश तारनी सूरज सुजला ज्योति और रयास ठाकुर और लक्षणपुर छत्तीसगढ़ सू विश्वनाथ पंकज तिरुपति और सरोजनी कुंती साहू और कल्याणपुर तहसील कलाना तहसील भादरा सु विक्रम कड़वासरा सचिन सतीश योगेश और ओ भाई सवर लिखिया करो उद्धव नाम है माधव नाम है
9: फूटो नाम लिखो भाई बात हाची है अपनी थोड़ी भाई लिखो जन ऊन लिखो नहीं तुम लगे जैसे मुकोड़ा बेजार उन भेजा है ऐसा डबाड़ी हरियाणा सु जेके बाखोलिया श्रीमती सुनीता बाखोलिया संजय अनिल और मीनू बाखोलिया और अपना नियमित श्रोता पुलिस थाने रे लारे हरिराम जी मंदिर रखन ने पुरानी लयन गंगा शेर सु भाई मंजुल मुकुल वर्मा प्रेमलता शैलजा हेम पुष्प नीरज ममता हेमंत दिबाकर सुमन युवराज शिव कुमार और सुशीला

90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

क्या तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: तो देखो संदेशा सुनिया और संदेश हम पहली कलूराम प्रजापति आलो गीत सुन रिया और धकलो गीत है भूंगर खारे गयोडो कनुड़ा तू जाने मारी प्रीत अर्जस हो गयो भाई और इनने सुनो चावरिया है कनेरा मोहल्ला पटियाला सुन मुकेश बत्ता नीलम नितिन पलक किरण गीतू निहारिका और वंश बत्ता फाजिल का पंजाब सु भूषण खेड़ा विशु विशाल टिवानसी शालिनी आर वी खेड़ा लाडी जीवन सिंह बुक आर पूरो खेड़ा परिवार गांधी चौक रोपड़ सु हरदेव मिक्का बलजिन बलविंदर जेतक आर मिक्का बीरक
1: घना दूर हुई पटेल नगर मल्लोट पंजाब सो डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया छगनदीप गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया और ऐसा अपने बीकानेर लालगढ़ सु असगर अली पजाबगीर अनवर अली पजाबगीर मुमताज सोनू टीना वहीदा सहीदा एम ए पवार खातुन बेगम और ताहिरा आ सगलारी दाय माथे बुंगर खारी आवाज में ओ कानूडो तू जाने मारी प्रीत

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत मतगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: मतगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: देखो तेलो भाई कार्यक्रम गुंजे गांव गुआड संदेशों पहले आप दायरो गीत सुनो और अगली दाय अब्दुल गनीर गौड़ गीत ने सुनना चाहे है लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान सू हर्षिता रामेश्वर कान्हा सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर भाई प्रभुलाल बागरी और ऐसा अपना श्री कोलाई जी सू फूसराज सोनी सूरज प्रकाश सोनी धर्मेंद्र प्रकाश सुंदर सोनी आरती चंदू और आयना सोनी
3: और अमरगढ़ तहसील साधु सैडसू कुलवंत मान लखविंदर कौर खुशप्रीत कौर गुरनूर हरविंदर राजा सिंह कुलविंदर कौर मान और केस मान गोविंदगढ़ माजी वाला करणपुर सू राजू टूटीजा खुशदिल उर्मिला गुड्डू जीनू मनु आदित्य भूमि राखी अमृत शिव सेठी करणपुरी और इस्माइल टूटीजा और सेक्टर 57 67 है भी हो मोहाली चंडीगढ़ सू टी डी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक नवनीत डॉक्टर अमनदीप अनिल शर्मा और कालका सू सुभेंद्र बजाज बिट्टा बजाज और साहिल सुनो चावरिया है आप ही पसंद रहो
2: ओ गीत सुन।

0: तेरे भाई उड़जर काग गगन का वासी, नाम न जानो मैं तो गांव न जानो, पर वही तो जानो कि थार कने आगली दाय खातर संदेशा उड़ायर कागज हाथ में लिए बैठा हो।
1: बिल्कुल कौन है? बिल्कुल देखो यार, राजस्थानी रा गीत कठे कठे लोग सुने, बड़ी खास बात है। यादव मोला सनावद है मध्य प्रदेश हूँ। देखो दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता मुस्कान, जितेंद्र मालाकार, ए अपर हर कार्यक्रम सुनिया करे। यार सिकंदर खान अमर सिंह पूरा सु है, बे भी शमसुद्दीन दी बड़ी सुन, बे आपर गीतरलो सुनो चावरिया, मोहम्मद सरबाज डूंगरगढ़ सुन, मोहम्मद अस्कर पवार, मोहम्मद अकबर पवार, राबिया मुन्नी, बरकत हजन, गुलजार अजीज और अस्कर भाई।
0: और देखो थोड़ भाई, ए है गांव चोखड़ी खुर्द, तहसील पिपार सिटी, जिला जोधपुर। लिखियो ऐसा, माई नेम धारू राम, मार भाईलो संदीप पवार, रवि पवार, विष्णु पवार, अर्जुन पवार, करण पवार, राम निवास पवार। ऐसे सुनना चाहे है बाबा राम सा पीरो कोई भजन होना दो।
1: बिल्कुल
0: आपा कन्ने बाजे माते चंदू भाई बैठा है, आने कहूं कि बजाओ एक फूट रो सो बाबे रो भजन और होना हो सकला रिदाय।

0: भाई खतावल तो आ है कि दाय करने वाला गणार भगत है कमर दिया बती रु टेम लोग माला मुनिया में लागूड़ा है बाबे भजन होना है और मन लागे लागतार चालता चालता एक सत्संग आलो कोई कांटो लगाए दांके
1: बिल्कुल बिल्कुल यार बो देखो कांटो जी को लगाओ
0: हमार कांटा ही लगाओ पर कांटो सत्संग रो होना चाहिए
1: साधु शहर सुन सुनो चावड़े हूं प्रकाश चौहान मनु प्रकाश शिव प्रकाश वेद प्रकाश चौहान और अनिका डब्बाली सु बसंत सिंह राजकुमार सुनीता और कुलदीप गांधी बठिंडा रोड डब्बाली सु राजेंद्र नारंग अंजू नारंग और मोहित नारंग और
0: देखो अपने अठे रही है भाई व्यास को

19 डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष कुमार शाही, श्रीमती संतोष कुमारी, राजश्री गौरव शाही और एहसार रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब सो जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक तोसा सुना आ सकना री दाय माथे हनुमान राणा रो गाउडो ओ भजन।

आपने सुना अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम और आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुति थी कुंजीलाल स्वामी और रामस्वरूप बिश्नोई की। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढूंढमरू चैनल है। संध्या के 7:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।

सुगम संगीत कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में अभी आपने सुनी नीलम साहनी के स्वर में सत्यदेव शर्मा की लिखी ये गीत रचना। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं धनंजय भट्ट के स्वर में महादेवी वर्मा की ये रचना।

के स्वर में गाई महादेवी वर्मा की इस रचना के बाद सुगम संगीत कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं अनवर हुसैन शेख के स्वर में गोवर्धन भारती की ये गीत रचना। संगीत डीएस रेड्डी का है।

हुसैन शेख के स्वर में गाई। गोवर्धन भारती की इस गीत रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मरु चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे है। लीजिए अब सुनिए बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। आज हम आपको सुनवा रहे हैं इसकी 146वीं कड़ी। वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय के हैं। प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखक की और संयोजन श्री अमित सिंह का है।

बीकानेर दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को महेश उपाध्याय का नमस्कार। इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। बीकानेर दर्पण के इस अंक में हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं स्थानीय धरणीधर मंदिर परिसर स्थित ऑडिटोरियम में। अवसर था साहित्यकार डॉ. मुकेश हर्ष की 3 पुस्तकों का लोकार्पण। तारीख थी 24 मई। ये 3 शोध परक पुस्तकें थी, बीकानेर की छतरियां, चूरू जिले का स्थापत्य और भारतीय संस्कृति समाज और पुष्करणा। कार्यक्रम के आरंभ में राजस्थान

0: राज्य अभिलेखागार के निदेशक डॉ. नितिन गोयल ने केंद्र सरकार की योजना ज्ञान भारतम के बारे में जानकारी देते हुए कहा।
1: ज्ञान भारतम का एक बहुत जरूरी अभियान केंद्र सरकार ने चलाया हुआ है और मैं ऐसा इसलिए साझा कर रहा हूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस छोटी काशी के अंदर जिन भी व्यक्तियों के पास 75 साल से पुरानी कोई भी पांडुलिपि पड़ी है तो उसको राजस्थान या केंद्र सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटाइजेशन, प्रिजर्वेशन, डीकोडिंग और पब्लिकेशन करवाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है और मेरा ये मानना है कि हमारे बीकानेर के अंदर इस समय बहुत से ऐसे घरों के अंदर निजी संग्रह उपलब्ध हैं जिनके अंदर समय के प्रभाव से खत्म हो रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपके पास अगर ऐसा कोई निजी संग्रह जो कि 75 वर्ष पुराना हो और हस्तलिखित हो तो उसको प्रकाश में लाएं, प्रिंट करवा के और उस जो संग्राहक है उसको लाभ पहुंचा सकें। मेरा इस मंच से कहने का यह भी कारण था कि इस समय राजस्थान पूरे इंडिया के अंदर पहले नंबर पर स्टेट चल रहा है। अपने सर्वे की दृष्टि से 16 लाख पांडुलिपियां हमने दी हैं और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि पूरे राजस्थान के 41 जिलों में बीकानेर सेकंड नंबर पर स्टैंड कर रहा है 3,40,000 पांडुलिपियों से।
0: पुस्तक समीक्षा करते हुए आप हैं अमित व्यास।
2: पुस्तक का शीर्षक है भारतीय समाज और पुष्करणा। आज जिस पुस्तक पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह कोई सामान्य रचना नहीं है बल्कि एक समाज की ऐतिहासिक चेतना, सांस्कृतिक गरिमा और सामाजिक विकास का जीवंत दस्तावेज है। यह पुस्तक विशेष रूप से पुष्करणा समाज के गौरवशाली इतिहास, उसकी परंपराओं और सामाजिक योगदान और उनके पुनर्जागरण की यात्रा का बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण करती है। यह रचना पाठक को केवल जानकारी नहीं देती बल्कि यह सोचने, समझने और समाज के प्रति सजग होने की प्रेरणा भी देती है। पुस्तक का मुख्य स्वर समाज के उन गुणों को उजागर करता है जिनसे किसी समुदाय की पहचान बनती है। पुष्करणा समाज के संदर्भ में लेखक ने शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक समृद्धि को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से सबके सामने रखा है।
0: डॉक्टर सुनीता विश्नोई ने दूसरी पुस्तक पर अपनी टिप्पणी रखते हुए कहा।
3: पुस्तक शुरू होती है अपने बीकानेर के पड़ोसी जिले चूरू से। राजस्थान की धूरों वाली भूमि में चूरू न केवल एक भूगोल अपितु इतिहास, कला व लोक संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। यहाँ की हवेलियाँ दीवारों पर नहीं समय की स्मृतियों पर चित्रित है। आज विमोचित हो रही पुस्तक चूरू जिले का स्थापत्य एवं कलात्मक अध्ययन जिसके लेखक डॉक्टर मुकेश जी हर्ष है वह न केवल एक पुस्तक है वरन चूरू की ऐतिहासिक आत्मा का दस्तावेज है। लेखक महोदय ने चूरू के सामान्य इतिहास से लेकर हवेलियों की स्थापत्य परंपरा, भित्ति चित्रों की रंग संवेदना, काष्ठकला की सूक्ष्मता, ऐतिहासिक छतरियों की भव्यता को अत्यंत शोधपूर्ण ढंग से प्रकट किया है। रेगिस्तान की नीरवता में भी चूरू बोलता है। अपनी हवेलियों की दीवारों से, अपने भित्ति चित्रों के रंगों से और अपनी छतरियों की शिल्प स्मृतियों से यह पुस्तक इसी मौन इतिहास को शब्दों से नवाजती है। यह कृति इतिहास के शोधार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस इतिहास प्रेमी के लिए महत्वपूर्ण है जो भारत की लोक संस्कृति और स्थापत्य को समझना चाहता है। यह पुस्तक चूरू की उस विरासत को शब्द देती है जो अब तक हवेलियों की दीवारों व भित्ति चित्रों में मौन रहे।
0: तीन पुस्तकों के लेखक डॉक्टर मुकेश हर्ष ने अपने अनुभव बताते हुए कहा।
4: हम लोग एजुकेशन पर ध्यान क्यों नहीं देते। मैं एक बार घर पे बैठे काउंटिंग कर रहा था, 1.5-2 ऐसे कॉपी में कैलकुलेट कर रहा था। दादाजी पास में बैठे थे, बेटा इतने होते हैं, तो हमें तो टेबल भी याद नहीं, हम तो 212 के शिकार हो रहे हैं, है ना। हमें तो चौथाई का पढ़ा याद नहीं, आधा के पढ़ा भी याद नहीं है, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें उस समय दिमाग में ही, फिर लगा कि अब ये तो मेरा एक परिचयात्मक काम मैं कर पाया। और दूसरा जब काम था, जब सर ने कहा कि बदल सर ने कहा कि यहाँ बीकानेर में बहुत सारा ऐसा विषय है जिस पर काम हुआ ही नहीं है और एक काम से दूसरे काम की चैन निकलती जाएगी, मैंने वो सोचा, देखा उसको। तो उसके बाद मैं ICHR न्यू दिल्ली को एक बार फिर प्रोजेक्ट अप्लाई किया और बीकानेर की छतरियों पर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मुझे मिला। कुछ समय पहले कोलायत विधायक अंशुमान जी ने भी चर्चा की थी कि भाई इस पर अपने कोई काम करें, कोलायत के बज्जू जज्जू सीरिया पर भी हम कुछ चाहते हैं। मैंने कहा निश्चित रूप से करेंगे।
0: समाज सेवी आनंद आचार्य ने इतिहास लिखों की चर्चा करते हुए कहा कि सत्य लिखा जाना आवश्यक है।
5: सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो आज लिखोगे वो 50 साल बाद आने वाला बच्चा उसको सच मानेगा। तो आपकी ईमानदारी

0: है कि आप जो लिखो वो ईमानदारी से लिखो, सच लिखो। किताब पे शोध करना और उस पर डायरेक्टरेट की उपाधि ले लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी आज की पीढ़ी को उस समाज की जानकारी नहीं है, तो ये एक जिम्मेवारी है। और इतिहास को समझा जाता है, आप अपने बच्चों को बताएं कि हम क्या है, हमारा शहर क्या है, हमारी धरोहर क्या है। सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर की पढ़ाई से नहीं होगा, बौद्धिक ज्ञान भी होना चाहिए।
1: इस अवसर पर क्या कहा राजेश चूरा ने, सुनिए।
2: इतनी मेहनत करके, इतना शोध करके इन तीन पुस्तकों को लिखा, खासतौर से पुष्करणा समाज की और छत्रियों की और चूरू के जो हवेलियां हैं उनके बारे में। निश्चित रूप से आनंद जी ने जो बात कही कि हम लोग आजकल इतिहास को भूलते जा रहे हैं, मुकेश जी का ये प्रयास वाकई सराहनीय है। हम लोग कोशिश करें सब मिलकर कि ये जो उन्होंने इतनी मेहनत करके इन पुस्तकों को लिखा है, तो हम उस पुस्तक से कुछ ज्ञान अर्जित करें और जो हमारी नींव है उस नींव को हम समझने का प्रयास करें। बाकी पुस्तक पढ़ने से जो तीन विश्लेषक थे उन्होंने बहुत विस्तार से तीनों पुस्तकों के बारे में बताया। हम कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर इन पुस्तकों से कुछ ज्ञान अर्जित करें और हमारे जो आने वाले शोधार्थी और विद्यार्थी हैं उनके लिए पुस्तक बहुत उपयोगी साबित होगी।
1: महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में कार्यरत इतिहास विभाग की प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर मेघना शर्मा ने कहा,
3: मैंने 1997 में लिखना आरंभ किया था और मेरी एक पुस्तक कहानी संग्रह का विमोचन यहाँ हुआ था, रिश्तों की वसीयत नाम है उसका। किताबों पर चर्चा मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि बहुत गुणी लोगों ने यहाँ चर्चा कर ली है और बहुत विस्तृत चर्चा हो चुकी है। बात करूं देवीकुंड सागर की, जो छत्रियां हैं वहां हमने एक टूर जरूर कंडक्ट करवाया था और वहां पर मुकेश जी ने लीड किया था उसे और हमारे बीच बैठे हैं रितेश जी, रितेश व्यास जी, मुकेश जी, ये दोनों ही लोग लीड कर रहे थे उसे। मैंने इन्हीं को लीडरशिप हाथ में दी थी और कहा था कि आप लोग काम करते हैं आर्किटेक्चर पे, आर्ट पे, तो उस पर बात कीजिए। तो उन्होंने कई ऐसे चिन्ह बताए थे जो पिलर्स पे बने हुए हैं और वो चिन्ह उन कारीगरों के चिन्ह, वो मुझे भी पता नहीं थी, ये बात मुझे भी आप ही लोगों से पता चली कि ऐसे चिन्ह इंकित हैं उन पर कि पता चलता है कि किस कारीगर ने कितना पिलर बनाया है। और उसके बाद उसने जब विराम दिया अपने कार्यक्रम को तो एक सिग्नेचर होता है ना, एक सिग्नेचर करके आदमी ऑटोग्राफ छोड़ देता है अपना, वो सिग्नेचर वहां छोड़ दिया और उसके बाद अगर किसी और कारीगर ने उस पिलर को आगे बढ़ाया है तो फिर आगे उसका सिग्नेचर उस पर इंगित है। तो ऐसे तीन तीन चार चार मार्क्स, साइंस, सिग्नेचर्स, ऑटोग्राफ्स, निशान हमें वहां प्राप्त होते हैं।
1: डॉक्टर चंद्रशेखर कच्छावा ने पुस्तक लेखन से संबंधित सरकार की योजना के बारे में जानकारी देते हुए अपनी बात रखी।
4: एक साथ तीन पुस्तकों को लिखना कितना दुरह कार्य है ये मैं देखता हूँ, क्योंकि पीएचडी के बहुत सारे स्कॉलर्स अभी नए नए आ रहे हैं तो उन्हें लिखने की प्रवृत्ति, समझने की गहराई, समय लगाने, ये सब बहुत कठिन है। तो आज 10 पेज लिखना भी मुश्किल है, उस समय में इतने बड़ी पुस्तकें और वह शोध ग्रंथ लिखे, इसलिए निश्चित रूप से मुकेश जी बधाई के पात्र हैं। अभी नितिन गोयल जी ने पांडुलिपिक संरक्षण की बात कही है, मैं एक सूचना और देना चाहूँगा आप सब विद्वजनों के मध्य कि भारत सरकार ने अभी नई पुस्तकें और पुस्तक लिखने के लिए एक अभियान चलाया है और इन 5 सालों में 3 लाख पुस्तकें ऐसे लिखनी है और उन पुस्तकों के लिए सरकार जो है प्रत्येक पुस्तक के लिए 3 लाख रुपए देने वाली है। इसलिए लेखन का कार्य, अध्ययन के साथ लेखन भी बढ़े, यह हमारे भारत सरकार का भी एक अभियान है।
1: बीकानेर के जाने माने इतिहास विशेषज्ञ बीएल भादाणी ने अपने अनुभवों के साथ अपनी बात रखी।
5: मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि ये जो काम का सिलसिला है ये बीकानेर में कैसे बढ़ा, मैं तो निमित्त मात्र था। हमने एक संस्था बनाई थी 2019 में, आर्कियोलॉजी एंड एपिग्राफिक सोसाइटी बीकानेर, और उसके हम लगातार हर साल एनुअल सेशन करते हैं और हमारा अगला साल जो सेशन हो रहा है 2026 के अगस्त के अंतिम सप्ताह में, वो भी उसी का परिणाम है। सीकर की एक संस्था ने हमें आमंत्रित किया है कि आप एक 3 दिन का सेमिनार करिए। तो जो आप बीकानेर के अलावा जो बीकानेर के बाहर के क्षेत्र में, जो पूरे राजस्थान में जो ये जो सिलसिला चला है कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे आपने क्षत्रियों का जो दस्तावेजीकरण किया है, ये सिर्फ दस्तावेजीकरण हुआ है, इसका बहुत जो एनालिसिस है इसके बाद है। बहुत सारे आजकल इतिहास को लेकर के बहुत सारे चल रहे हैं कि इतिहास फला दौर से लेकर

0: के फलादौर का इतिहास नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आप क्षत्रियों को देखेंगे तो वो इतिहास आपको इसमें नजर आएगा।
1: आप हैं कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे बीकानेर पश्चिम विधानसभा के विधायक श्री जेठानंद व्यास।
2: आज ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो रखा गया है, जिनके कारण जिन्होंने मेहनत करके दिन रात एक करके इधर उधर भटक कर पूरा दिमाग लगाकर और कितनी मेहनत करने के बाद 3 किताबें लिख के आज उनका विमोचन करवाया है, यानी भारत माता के वो बेटे बेटियां जैसे मान लक्ष्मीबाई है, अगर हम उनको पढ़े तो हमें यानी हमारी छाती भी छोटी होती है, हमें गर्व भी होता है कि हमारा ऐसे ऐसे महापुरुष इस देश में हुए हैं, इतिहासकार भी बहुत अच्छे अच्छे हुए।
1: मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु डॉक्टर सुमंत व्यास ने अपनी बात रखी।
3: एक किताब आप समाजशास्त्र पर लिखी और 2 किताब स्थापत्य काल पर लिखी, पुस्तकों का प्रकाशक है, मैं उन्हें भी साधुवाद दूं और मुकेश जी ने विशेष रूप से आग्रह करूं कि किताब ने कोशिश करें डिजिटाइज वर्जन रूप में। 2 तरीके के क्या है सोसाइटी, आप सुना, एक वेस्टर्न सोसाइटी और एक ओरिएंटल सोसाइटी, दोनों में एक बड़ी पीड़ा होती है। अगर सो कॉल्ड वेस्टर्न सोसाइटी से बात करता मिलता तो भाई कहता है कि आप रेटे लिखने की परंपरा को नहीं, आपने रेटे मतलब ओरिएंटल साइंस में ओरिएंटल जी की पूरा क्षेत्र है भी मैं लिखने रही परंपरा को नहीं, थोड़ा सी अध्ययन करो जो ठा पड़ी कि लिखने रही तो बहुत पुरानी अपरखने परंपरा ही, पर 5वीं शताब्दी में होन आया और तक्षशिला ने खत्म कर गया, फिर भी संघर्ष चालियो और 12वीं शताब्दी के आसपास खिलजियां जी किए पर नालंदा ने खत्म कर दी, तो बीरे बाद में हमारे ख्याल से हिम्मत जवाब देगी आप रे, और लिखने री बजाय परंपरा आ चली कि पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आप ज्ञान ने आगे री तरफ प्रेषित करा, वो एक बहुत बड़ी कमजोरी रही जिके कारण चाहे मैक्स मुलर हो चाहे टॉड हो चाहे और भी जितना भी विदेशी आया वे आप रे हिसाब से इतिहास लिखियो और आप भी उन्हें मानता गया, कहे भी है सब बधाने जी के इतिहास विजेता लिखते हैं, तो एक दौर हुए जिके में जो भी नायक हुए वे आप रे हिसाब से इतिहास लिखे और आप रे तरीके से बिना स्थितियों ने प्रेजेंट करे।
1: श्रोताओं 22 मई को स्थानीय नरेंद्र सिंह सभागार में श्रीमती कमला देवी लक्ष्मी नारायण रंगा ट्रस्ट बीकानेर प्रज्ञालय संस्थान बीकानेर द्वारा ख्यातनाम साहित्यकार रंगकर्मी चिंतक और शिक्षाविद कीर्ति शेष लक्ष्मी नारायण रंगा की पावन स्मृति में सृजन सौरम हमारे बाबूजी कार्यक्रम के तहत 3रा राज्य स्तरीय लक्ष्मी नारायण रंगा प्रज्ञा सम्मान 2026 समारोह आयोजित किया गया। सम्मान 2026 से जिन महानुभावों को सम्मानित किया गया आप हैं साहित्य के क्षेत्र में वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. सत्यनारायण सोनी, शिक्षा और शोध के क्षेत्र में कुलगुरु कृषि विश्वविद्यालय कोटा डॉ. भीमराज डुकवाल और रंग कर्म के क्षेत्र में वरिष्ठ रंग कर्मी फिल्म अभिनेता विजय सिंह राठौड़। आइए पहले सुनते हैं सम्मानित होने वाले महानुभावों ने क्या कहा। सबसे पहले सुनते हैं डॉक्टर विमला डुकवाल को।
4: प्रज्ञा सम्मान के लिए आपने मेरा चयन किया, बीकानेर को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कोटा में, जहाँ तक मुझे प्रज्ञा से समझ आया कि उतनी गहन अंतर्दृष्टि मुझे होनी चाहिए और जहाँ मैं सत्य और असत्य में अंतर कर सकूँ, या जैसे हम बोलते हैं ना ज्ञान उदय होना, जैसे मुझे जब मोक्ष प्राप्त हो जाए तो ऐसी वाली स्थिति अभी तो आई नहीं, लेकिन आपने जो एक जिम्मेदारी मुझे दी है उस जिम्मेदारी को मैं पूर्ण तरह से निभा पाऊँ, मैं ऐसा अपने शेष जो जीवन बचा है मेरा उसमें मैं कोशिश करूँगी। आप सब ने जो मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और आप हैं वरिष्ठ साहित्यकार सत्यनारायण सोनी।
5: મારું ચયન કર્યો આપ સગલાનું મેં બહુ ગુણ માનું એહસાન માનું હાલાંકિ

0: प्रतिज्ञा शब्द बहुत बड़ो अर्थ हुए। मैं इन लायक तो नहीं हूं, मने हजरत सुल्तान बाहुरी एक जी की काफी है, बायात आवे के ना मैं सिर ना मैं पाछ हटाकी, ना मैं सिर ना पाछ हटाकी, ना पूरी सरसाई हूँ, ना मैं तोड़ा ना मैं मासा, गलरतियां ते आई हूँ। ना मैं तोड़ा ना मैं मासा, गलरतियां ते आई हूँ, रत्ती होवा रतियां तुलना, रत्ती होवा रतियां तुलना, तो भी पूरी नाई हूँ, वजन तोल पूरा तद होसी, जद होसी फजल इलाही हूँ।
1: रंगकर्म के क्षेत्र में सम्मानित होने वाले रंगकर्मी विजय सिंह राठौड़ ने अपनी बात कुछ यूं रखी।
2: मारा इन सम्मान रामायण आप लोग पधारिया, घने मानसो मन हरक हो, प्रज्ञा सम्मान समारोह में मैं आप सगड़ा रहा सामी उपस्थित हूँ। इनो विशेष कारण वो नहीं है कि मैं बहुत मोटा तीर मारा, मारा सागर जगह मारा साथी है, सगड़ा भी मारा बराबर रंगकर्मी है, सहयोगी है, सब बहुत अच्छो रंगकर्म करे, राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी सामने बैठे राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। ब्रह्मलीन आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी रंगा साहब सु मैं बहुत प्रभावित रही हूँ।
1: समारोह के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार कथाकार मालचंद तिवाड़ी ने अपनी बात कही।
3: एक तो मित्र राजस्थानी में साहित्य अकादमी रा पुरस्कार अब तक काफी संख्या में मिल गया, और बारे मायने आप देख सो तो नाट्य विदारी जी की कृतियां हैं, माने अब तक 3 ही पुरस्कार मिले। मधु जी नाटककार है लेकिन आने भी उपन्यास विधा में पुरस्कार मिले है, लेकिन लक्ष्मी नारायण रंगा साहब ने पूर्ण विदम पर साहित्य अकादमी रो 2006 रो अवार्ड मिलो। तो राजस्थानी नाटक ने मंचन रे माध्यम से प्रतिष्ठित करने रो अखिल भारतीय काम तो अपरे अर्जुन देव जी चारण करो, लेकिन राजस्थानी नाटक रे पाठ ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने रो, क्योंकि साहित्य अकादमी से जब कोई कृति पुरस्कृत हो तो 24 भारतीय भाषाओं में बीरे अनुवाद रो रस्तो खुल जावे।
1: त्याग भाईचारे और आस्था का पर्व ईद उल अजहा दिनांक 28 मई को उत्साह के साथ मनाया गया। ईद उल अजहा की नमाज प्रातः 8 बजे नया शहर स्थित बड़ी ईदगाह में सामूहिक रूप से अदा की गई। ईद की नमाज शहर काजी जनाब शाह नवाज हुसैन ने अदा करवाई। सुनिए एक झलक।

0: अब सुनिए, ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष हाफिज फरमान अली ने ईदगाह के आसपास रहने वाले हिंदू भाई बहनों, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था की तारीफ करते हुए बीकानेर में फैल रहे नशे की लत पर चिंता करते हुए इसे रोकने का आह्वान किया।
1: आज ईद उल जुहा का त्यौहार बड़े ही मोहब्बत के साथ में, बड़ी अकीदत के साथ में हम सब लोगों ने मिलकर मनाया, और आसपास के जो हमारे पड़ोसी जो है हिंदू भाई है, वो लोग हमारे साथ सदियों से, सालों से हमारे साथ मदद करते आ रहे हैं। पड़ोसी लोग, जिला प्रशासन हो, यहाँ के पड़ोस के लोग हो, यहाँ के लोग, उन सबको मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान बीकानेर बन जाए। बीकानेर जो है एक ऐसी तहजीब का एक मरकज और किला है कि जहाँ पे मुस्लिम भाई जो है हिंदू भाई के यहाँ पे दीपावली के मौके में जाता मिठाई खाने के लिए, और वहाँ के हिंदू भाई जो होते हैं ईद के मौके पे हमारे यहाँ पे शिरकत करते हैं, ईद में शामिल होते हैं। और होली का मौका होता है तो हम लोग जाते हैं, इमाम हुसैन की शहादत का गम होता है तो उस गम में भी ये लोग हिस्सा लेते हैं। तो ये बीकानेर शहर है, बीकानेर की पहचान है। तो मैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये पैगाम देता हूँ एक, कि अभी जो शहर का जो माहौल बिगड़ा हुआ है, फिजा बिगड़ी हुई है, ऐसा माहौल बिगड़ा हुआ है कि मजधार में

0: ये शहर नौजवान तबके के जो लड़के हैं नशा पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन बहुत ही इस चीज़ में एक्टिव है, वो तो हर तरह से अपने पूरी कोशिश करेंगे कि शहर को नशे से बचाया जाए। माँ बाप को चाहिए सबसे पहले जो क्लास है वो माँ बाप को लेना चाहिए कि अपने औलादों पर कंट्रोल करें। तो आज का मेरा ये मकसद है कि नशे पर थोड़ा सा आवाम तक पैगाम पहुँचाए, नशा वो गंदी चीज़ है, इससे बचें। और तमाम लोगों की ईद की मुबारकबाद हो। दो रकअत नमाज ईद उल अजहा हाफिज शाहनवाज हुसैन साहब ने शाही इमाम साहब ने पढ़ाई, बड़ा सुकून से पढ़ाई।
1: बड़ी ईदगाह में नमाज अदा कराने वाले शहर काजी जनाब शाहनवाज हुसैन ने अपने संदेश में बधाई दी और जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक का माकूल व्यवस्था के लिए शुक्रिया भी किया।
2: हिंदुस्तान वासियों को पहले तो मैं ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 36 को हमारे भाई भाई सबको ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और बड़े ही इत्मीनान के साथ बड़ी ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाई गई, दो रकात नमाज माए 6 तकबीरों के साथ। और प्रशासन कलेक्टर साहब SP साहब ने बड़ा ही इत्मीनान के साथ अच्छा माकूल व्यवस्था इंतजाम किया, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: ईद उल जुहा के अवसर पर पूरे शहर के साथ साथ बड़ी ईदगाह पर भी पुलिस और प्रशासन की माकूल व्यवस्था की गई थी। हमने बात की अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्री रमेश देव से।
3: सभी को ईद मुबारक, सभी नमाजियों ने अकीदत से नमाज पढ़ी, अनुशासित ढंग से सारी व्यवस्थाएं थी, जगह जगह पर पुलिस हमारे पिकेट्स रेडी रख रखे थे और छोटी मोटी व्यवस्थाएं सभी जो है वो नगर निगम द्वारा और बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई थी। साफ सफाई की व्यवस्थाएं ठीक है और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई।
1: बीकानेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बीकानेर की सभी मस्जिदों पर माकूल पुलिस इंतजाम की बात कहते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के बारे में भी बताया।
4: देखिए, ईद का त्यौहार जो है एक बड़ा त्यौहार है और हर वर्ष की तरह माकूल जो है पुलिस बंदोबस्त किया गया है। ईदगाह मुख्य ईदगाह पर मुख्य नमाज होती है, नमाज के अलावा भी जिन जिन और भी मस्जिद जहाँ पर भी है वहाँ पर भी नमाज अदा होती है। सभी जगह माकूल पुलिस व्यवस्थाएँ की गई है, ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रखा गया है। उसके अलावा शहर में जगह जगह जो है फिक्स पिकेट लगाए गए हैं ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।
1: और आइए अब सुनते हैं ये युवा रेहान क्या कहता है युवा पीढ़ी को।
5: नाम मोहम्मद रेहान है, मैं 12th में पढ़ता हूँ और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ईदी कुर्बानी ये सिर्फ कुर्बानी नहीं है, हमें अपने अंदर जो कि भरी हुई है हमें उसे कुर्बान करना चाहिए, हमारा अहंकार हमें उसे कुर्बान करना चाहिए, हमारे अंदर जो अनयूजुअल चीज़ें हैं जैसे हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें भी पसंद नहीं है हमें उन्हें त्यागना चाहिए, हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो ये नशा है इसे आप इस दिन कुर्बान कीजिए और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए।
1: श्रोताओं अब सुनिए ईद उल जुहा पर बड़ी ईदगाह पर नमाज अदा करने आए नमाजी क्या कहते हैं ईद उल अजहा के बारे में।
6: ईद उल अजहा का त्यौहार के मौके पर मैं पूरे देशवासियों प्रदेशवासियों शहरवासियों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। ये वो त्यौहार है जो त्याग तपस्या बलिदान का त्यौहार है। बलिदान का त्यौहार हम यूँ कहेंगे, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ कुर्बान कीजिए। उस ज़माने में धन और दौलत ज़मीन जायदाद तो हुआ नहीं करती थी, अपनी औलाद ही सबसे प्यारी हुआ करती थी। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की नीयत से एक पहाड़ी पर ले गए जहाँ पर उनको कुर्बान करने के लिए लेटाया। लेटाने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके अपने वसीयत के अनुसार बेटे की वसीयत के अनुसार आंखों पे पट्टी बांधी और छुरी उनके हलक पर रखी, लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह ने उस कुर्बानी को कबूल फरमाया, उसकी जगह अल्लाह ने जन्नत से एक डुम्बा भेज दिया। वो छुरी उनके बच्चे पे नहीं चलकर बल्कि डुम्बे पे चली गई और अल्लाह की राह में वो कुर्बानी कबूल हुई। उस दिन से हर मुसलमान पर एक जो साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब कर दी गई है। मैं कुर्बानी से मतलब जानवर से कुर्बानी से नहीं है, उनकी नीयत ये थी अल्लाह की राह में अगर आपके पास धन है

0: तो आप धन की मार्फत जो गरीब लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, उन लोगों की खिदमत करें। आप अपने देश के लिए अगर धन लगा सकते हैं और देश की एकता अखंडता को कायम रख सकते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को कायम रख सकते हैं और अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने देश के लिए बलिदान कर सकते हैं, यही सच्ची कुर्बानी है। इस मौके पर मैं कहूँगा कि त्याग तपस्या बलिदान का त्यौहार है, हम सब लोगों को अपना स्वार्थ छोड़ करके और अपने देश हित में और अपने समाज हित में, अपने परिवार हित में काम करना चाहिए।
1: सांगीलाल वर्मा मेघवाल, आज ईद के मौके पे सभी मुस्लिम

0: करके हमेशा इनको ईद मुबारकबाद देते हैं। ये हमारी संस्कृति है हिंदू मुस्लिम भाइयों की, ये बनी रहे और ये भारत में एकता और अखंडता के साथ हम बधाई देते हैं उनको।
1: आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये त्यौहार त्याग और कुर्बानी का त्यौहार है, हमें हमारे अंदर जो भी बुराई है उन सबका त्याग करना चाहिए, यही इस त्यौहार का संदेश है। हमें आप सबको एक बार फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।
2: श्रोताओं, ईदगाह के आसपास रहने वाले हिंदू भाइयों द्वारा गर्मी के इस मौसम में पानी आदि की सेवा भी लगाई गई। क्या कहते हैं ये सेवादार?
3: राजीव पंचारी, हमारे यहाँ नमाज पढ़ी जाती है हर साल, साल में दो बार। हम इनके साथ हर चीज में सपोर्ट में रहते हैं और पानी की सेवा, इनके साथ घुल मिल कर रहना, हम एकता का प्रतीक चाहते हैं। सब हम एक मिलके रहेंगे तभी राष्ट्र बनेगा। तो ये ईद हर साल हम मिलके बनाएं और सबकी यही भागीदारी रहे, मैं यही चाहता हूँ।
2: तो ये था आज का बीकानेर दर्पण। संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेगा की, वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का। अगले शनिवार तक यानी अगले अंक तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

ये था बीकानेर दर्पण, बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम। आज आपने सुनी इसकी 146वीं कड़ी। वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय के थे। प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखा की और संयोजन श्री अमित सिंह का था। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मरू चैनल है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। क्षमा करें, रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत

0: करना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए भूंगा खान के स्वर में लखी बंजारा लोकगीत।

धारावाहिक के स्वर में गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोली मारू चैनल है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ @9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि सीएलपी नेता का चयन का कार्य एआईसीसी को सौंप देना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डीके शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।

0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: Între schimb prietenii Leonel pentru a nu-i se accepte.
1: Eu am cerut ca care grup să-i jure.
0: Dar nu-i se ajută. Teli loc control fi număr 1-4-5-4. O website www.teli-law.nz. Practica să fie.
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ

0: जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। FCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है।

मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है मधुमती अभिनीत फिल्म ये रात फिर न आएगी का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की। एस एस बिहारी के बोल हैं और ओपी

फिल्म में और इस गीत में विश्वजीत और मुमताज के साथ डांस करती हुई दो कलाकार आपको नजर आती हैं, उनमें से एक है मधुमती और एक है हेलन।

तो ये था नर्तकी और अभिनेत्री मधुमती अभिनीत फिल्म ये रात फिर न आएगी का गीत आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। अगर आपको इस गीत में समझ नहीं आया है कि मधुमती कौन है तो कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं शिकारी फिल्म का ये गाना जिसमें मधुमती और मदन पुरी ने अभिनय किया है। आवाजें हैं आशा भोसले और उषा मंगेशकर की। मधुमती का जन्म 30 मई 1938 को हुआ माना जाता है तो कहीं 30 मई 1941 को भी उनका जन्म माना जाता है।

ये था मधुमति अभिनीत फिल्म शिकारी का गीत। इन दो गीतों में हमने याद किया अभिनेत्री और नर्तकी मधुमति को, और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता परेश रावल अभिनीत इस फिल्म का गीत। आज परेश रावल जी का जन्मदिन है।

तो दोस्तों ये था आज का फिल्म संगीत, और आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में हमने याद किया अभिनेत्री मधुमती को उनकी जयंती के अवसर पर और अभिनेता परेश रावल को उनके जन्मदिन के अवसर पर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये फिल्म संगीत पसंद आया होगा। हीरो नंबर वन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोले मरु चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब युवा भारती कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड। 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को

0: फिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब, इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मार्तंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्यामे आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की, पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। करणी शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30-35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद रखना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता, विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
0: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विश्व

0: लाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी की 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
1: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका है लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहां अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहां का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया, और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहां विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहां शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
0: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के

0: नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रैवल ब्लॉगर्स। जब घर के चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाए तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनके रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं। यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
2: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं। हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है। आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है। आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का। हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा। सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस नहीं है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
1: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला है, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
2: अच्छा।
1: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपनी लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
3: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत इसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
1: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी

0: सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से, लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
1: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी, तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजी जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग, पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है। कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
2: लोपदगामिनी।
3: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है, हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है, बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
0: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था, हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो म्यूजिक, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़े, तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी, चैलेंज लिया था आपने, पूरा इंडिया घूमा, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है,
1: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
2: बहुत ही मददगार होते हैं।
1: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
0: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवर थिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसकी आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है, तो जो हमारे पास है सबसे पहले हमें उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
1: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड
0: ये ऐसे जितना छोटा हो सके, मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो।
0: जो गोल है गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम

0: आसान बनाना है।
1: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
2: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने चार सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी तो बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
0: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
3: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, न उम्र की, न दूरी की, न परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
4: जी धन्यवाद।
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
4: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
3: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
4: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है। खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटि की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उस पे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कंपोनेंट है।
3: जी
4: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहां पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
3: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, अगर इग्नू की बात करें तो?
4: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है। कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें

0: अपने नॉलेज को इनहेंस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है, 10+2 आपने किया हो ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरिंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए।

0: ये था युवा भारती कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
1: और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मुकाशी का शास्त्रीय गायन।
2: नमस्कार। In today's All India program of music, we bring to you a classical vocal performance by Vidushi Smita Mukashi.
1: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मुकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
2: The top great artist of आकाशवाणी एंड दूरदर्शन Vidushi Smita Mukashi has dedicated herself to the pursuit of notes and thoroughly absorbed the rich tradition of classical singing. Her voice has been beautifully nurtured under the guidance of legendary gurus including Pandit Ajay Pohankar.
1: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
2: She has graced prestigious music festivals like the Tanzan Samarov and Ustad Amir Khan Samarov, leaving an indelible mark with her singing from the Prayag Mahakumbh to the Nehru Center in London.
1: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
2: Honored with several accolades, including the Kalashree and Mohammad Rafi Awards, her performances are not only technically flawless, but also deeply reflect the soul of Indian classical music.
1: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल है मानो तज दे हो प्यारे। मध्यले तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो ना जियरा मोरा और एक ताल में निबद्ध द्वित रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
2: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। The first is Vilambit composition set to Ektaal with the lyrics Maan Taj Deho Pyare. This is followed by a Madhyalay composition set to Teen Taal with the lyrics Maan Na Jiyara Mora.

0: हम सुने ईरी आई अद्भुत एकता में निबद्ध बंदिश के बोल है राग संग रागिनी नील मंगल गाई
1: ट्रांजिशन इन राग रागेश्री दैट वॉज विदुषी स्मिता मुकाशी रिंग रिंग राग मारो बिहाग स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री द फर्स्ट इज मध्य लय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी इंडी आली This will be followed by a Dhrut Bandish set to Ektaal with the lyrics Raag Sang Ragini Mil Mangal Gaayi.

0: दूसरी स्मिता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुखर्जी। अकंपनिंग यू ऑन द तबला वाज गांधार राजहंस एंड ऑन हारमोनियम वाज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टूडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।
2: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम

श्रोताओं, इस बदलते मौसम में आप अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इस गर्मी के मौसम में समय समय पर पानी और शरीर को ठंडा और एनर्जी देने वाले पदार्थों का सेवन करते रहें। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदन

मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।